فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिंध में धाड़ेल राज हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी भी नाकाम अगवा थियल KTN न्यूज खानपुर मर जो रिपोर्टर अजीम सियाल बाजियाब न थियो वारसन का एक करोड़ रुपया भुंग तलब अजीम सियाल की गुजरियल डी पनवाकल के कचे में गाड़ी मिली हुई डीआई जी सखर नासराबता पठान अजीम सियाल की अगवा की तस्दीक कदे है KTN न्यूज जो रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा थियो है बाजाबी लाए संजीदा आयो ड्रोन कैमराउन जरिए मॉनिटरिंग शुरू कई है घरू वजीर जियाल अंजार आए जी सिंध साफ जी अगवा जो नोटिस वरतो डीआई जी सखर का रिपोर्ट तलब KTN न्यूज खानपुर मार जे रिपोर्टर अजीम सियाल जे बाजियाबी लाए कलम धणी सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहरन में मुजाहिरा धरना घोटकी सखर शहदादपुर रतोदेरो बख्शापुर भानसैदाबाद न्यू सईदाबाद ठिकराठो कश्मोर डारकी जरवा रोहिड़ी कंबर कोटड़ी राधण पनवाकल तंगवाणी ठारू शाह मुरीद शाख डोकरी मीरपुर साकरो अठ अठ मोरी रतोदेरो गंबट मदे जी मुबारकपुर सगियों ड्रिब मेयर शाह बबरलो ए बियन शहर में कलम धरन एहतजाज कयो साफ अजीम सियाल के बाजियाब कराने जो मुतालबो अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप है ईरान के शर्तन के नाकाबिले कबूल करार दई छो गालिन जो भी इम्कान जाहिर संदस चवण है तो उम्मीद है हलंदड़ हफ्ते ईरान से गाल मुआदे ला ईरान जा शर्त कबूल जोगा ना इन अग ट्रंप दावा कई हुई तो ईरान जल्द शिकस्त तस्लीम कद जंग खत्म थन्दे पेट्रोल भी सस्तो थी वो ईरान अमरीका से बीहर जंग करण लाए भी तैयार है सफारतकारी डां वापस अचण लाए को भी जवाज ना है ईरानी परदेही वजीर अब्बास राजी है तेहरान जंग जो खात्मो चाहे तो आबना अर्म्स खोलण लाए भी तैयार आयो अमरीका जंग खत्म करे असाजा मंजम असा सा बहाल करे पेट्रोल विक्रो कर पाबंदी हटाई वजन ईरान पारा समुंड में अमरीकी जाचूस अफजोस के हथ करण की दावा वीडियोज भी जारी कई वही ईरानी अख्तियार मूजिब अमरीकी जाचूस अफजोस के सालमत हालत में हथ कई वो अमरीकी अफजोस ईरान समुंड में बारूदी सुरंगन बाबत जाचूसी कर रही हुई पकड़ियल अमरीकी जाचूस अफजोस की मालियत 10 मिलियन डॉलर है पाकिस्तान आईएमएफ विच में अज बाजाबता गाल शुरू थन्दू आईएमएफ जो वफद इस्लामाबाद पहुंची वो जरिए जो चवण है गाल 30 जून ताई जी अंगन अखरन ते थन्दू नाणे वाले वजीर से गड इक्तसादी टीम भी गाल में हिस्सों वी पाकिस्तान तरफा सावरन वेल्थ फंड ए गर्दशी कर्ज में घटताई से ब्रीफिंग डिनी वी आईएमएफ के करंट अकाउंट खसारे प्राइमरी सरप्लस सूरताल का भी आगाह किया वो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में दहशतगर्दन खिलाफ फोर्सिस जो ऑपरेशन शोबान जारी चैन डी दौरान 71 का दहशतगर्द मार आईएसपीआर मूजिब 21 सेप्टेम्बर का कोटिया के मुख्तलिफ इलाक में ऑपरेशन किया वो जियारत ए भरपासे में दहशतगर्दन के थाकन के तबाह किया वो रुगो ऑपरेशन शोबान में हेल तई 33 भारतीय दहशतगर्द मार 23 दहशतगर्द मार 25 सेप्टेम्बर से नौशकी में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्द मार मंडी में 6 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो किया वो मार दहशतगर्दन वटा वे मकदार में हथियार ए बारूदी मवाद हथ कई वो है सिक्योरिटी फोर्सिस वे इलाके के क्लियर कर मान खतरे का महफूज बणा भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन तंदड़ दहशतगर्दी शहर ने अमन लाय खतरो पाक बहरिया के आबदूज हंगोत पारा अरबी समुंड में पे लाइव वेपन फायरिंग जो कामयाब तजुर्बो PNSM हंगोज ड्रिगे मुफासिले तई मार कंदड़ एंटी शिप क्रूज मिसाइल कामयाबी से फायर कई वो आईएसपीआर मौजूद एंटी शिप क्रूज मिसाइल हदफ के कामयाबी से निशानो बनाया पाक बरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो कयो नेवल चीफ हंगू अब्दोस की जंगी सलाहियत अमले के पेशवारन महारत के सारा असाजा रस्ता रोकया पा वन 4 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च जरूर कंदी मोटरसाइकिल न तो साइकिल वेंदी साइकिल भी न होंगी तो पंध निकरंदी केपी के वे वजीर सोहेल आफरीदी है उदे पुठियां ड्रोणींदड़ शख्स नंढो हों लॉन्ग मार्च जरूर थो लॉन्ग मार्च की तारीख बीहर तब्दील थी हि तारीख से तारीख वारो मामलो है केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है सोहेल आफरीदी वही रो है या को बो अची रो है पीटीआई बुधाए सके थी जैसे इस्तीफा आयो है तो मंजूर कर वठंदुस पेट्रोलियम वे वफाकी वजीर अली परवेज मलिक है जर समझे तो इस्लामाबाद से चढ़ाई कर कंखे छड़ा सके तो रियासत एतरी कमजोर ना है नून लीग अगवाण ख्वाजा साद रफीक रियासत एहतजाज कंदड़न के गालिन करण जो मशवरो दई छड़ियो ख्वाजा साद रफीक चयो आए त एक बे सा गालिन जो सिलसिलो जारी रखियो वञे मसला हल करण जी नियत हुजे त रस्तो निकिरी ईंदो आहे हुकूमत एहतजाज कंदड़ जिद अना छॾिन पीटीआई पारा लॉन्ग मार्च हफ्ते लाए मुलतवी करण बाद पेशावर का इस्लामाबाद ईंदड़ वींदड़ रस्ता खुली वा अटक खैबराबाद वटा जीटी रोड के 10 दिन बाद ट्रैफिक बहाल पेशावर मोटरवे समेत बेन रस्तन तां भी रंडकू हटाई वही पंजाब में भी बंद कल रस्ता खोलिया हुआ भान सैदाबाद के इलाके लखीचा सदर वेझो गैस सिलेंडर धमाके से फाटी पियो 5 पोरे तो सड़ी जख्मी थी पिया जख्मियों में शहबाज अली अब्दुल सत्तार अरशद मोहम्मद खालिक अब्दुल खालिक शामिल संदन के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: अजरक के रंगों से रंगी
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
4: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

का रखती।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क जिंदगी आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਤੁਹਾਨੀ ਤੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜਿਸ ਗਈ ਨਵਾ।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बनल गुजरल डी का अगवा थियल KTN News खानपुर मार जो रिपोर्टर अजीम सियाल अना बाजियाब न थियो आई जी सिंध ए घरू वजीर सिर्फ नोटिस वी वही रहा सिंध हुकूमत भुंग बाबत मुगी साहब के वारसन से राबत न कयो धाड़ेल गुजरल अजीम सियाल के वारसन के फोन कर एक करोड़ रुपया भुंग घुर संदस वारसन जो चवण है करोड़ भुंग किथा आनींदी कलम धड़न जो चवण है कलम धड़न के अगवा जहा वाक्या गणती जुगा सिंध हुकूमत उन जवाब दे।

अमेरिका जंग खटी चुको आए पर कार्रवाई मुकमल तौर से खत्म न थी आन। अमेरिकी सदर फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे मिड टर्म चूंडन का अग ईरान ते हमलो कर सका तो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है। असो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकण आ। ईरान खिलाफ फौजी ए मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही आय। ईरान अमेरिका से बीहर जंग करण लाइ भी तैयार है। सिफारतकारी दां वापस अचण लाइ को भी जवाब ना है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राकी है तहरान जंग जो खात्मो चाहे तो अपने अर्म्स खोलण लाइ भी तैयार आयो। अमेरिका जंग खत्म करे असाजा मंजंद असासा बहाल करे पेट्रोल विक्रो करण ता पाबंदी हटाई वजन। मीर रजा केस में वडे वजीर अदालती कमीशन के मुद्दे में वाद वारी समरी मंजूर करे वरती। जरियन मूजिब वडे वजीर समरी मंजूर करे वरती आए पर सिंध काबीना का भी मंजूरी वरती वेंदी। मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुद्दों गुजरे डी पूरो थी वयो।

0: मीरपुर माथिलो में पुलिस हिरासत में जवाबदार फरार थियण ते टे पुलिस अहलकार गिरफ्तार। पुलिस अहलकार इम्तियाज कलवर, एजाज गडाणी ए अल्ताफ शाह के गिरफ्तार कयो वियो। एसएसपी घोटगी अनवर खेतरान टिनी पुलिस अहलकारन के क्वार्टर घाट कयो। पुलिस मुकाबले के समय गिरफ्तार फारूक बोजदार पुलिस मोबाइल में फरार थी वियो। मेहण में नौजवान के कातलन की गिरफ्तारी लाए वारसन जो पाक किताब खणी प्यादल मार्च। मकतूल सज्जाद चांडिया के वारसन 3 किलोमीटर प्यादल मार्च करे प्रेस क्लब आडो धरणो हयो। वारसन जो चवण आए तो पुलिस कत्ल केस दाखिल कराने बावजूद जवाबदारन के गिरफ्तार ना कर सकी। जवाबदार मौतमार धमकियों दई रहा है, पुलिस भी जवाबदारन की धुर बणियल है। सांगड़ में कत्ल थियल नौजवान के कातलन की गिरफ्तारी ला एहतजाज वारसन गोठाणन। हसन पठान के कातलन की गिरफ्तारी ला चमड़ाव रोड बंद कर एहतजाजी मुजाहरो कयो। वारसन जो चवण है तो मंगली पुलिस नौजवान के कातलन की गिरफ्तारी ला का भी कार्रवाई न कई है। जवाबदार सिंध के मुख्तलिफ शहर में हादसा 3 जणा फोत 1 जख्मी। सखर में लोडर रक्षा जो टक्कर सबब 8 साल के अलीजा मसीह फोत। हिंगोरजा में टालर जो मोटरसाइकिल के टक्कर औरत बख्तून फोत थी वही। दादू में पुलिस मोबाइल कल्टी थे सबब जख्मी थे अहलकार फोतें जो अंग बथी वो। जमादार एहसान शाहानी कराची के अस्पताल में जख्म की सट न सहंदे दम धनिया वाले कयो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हाल करे तंहिंखे।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

इस्तलाह आईएमएफ ऐं पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं थींदियूं। अॼु आईएमएफ मछी नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। आईएमएफ मिशन जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। आईएमएफ जो मिशन स्टेट बैंक जे ज़रियनि मां मुतमैन आहे। आईएमएफ खे सऊदी अरब जे डिपॉज़िट बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बणियल गुज़िरियल ॾींहं खां अॻुवा थियल केटीए न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अञा बाज़ियाब न थियो। आईजी सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति बि मुगवी साहफ़ीअ जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल ॾींहुं अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवणु आहे त 1 करोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवणु आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया ॻणितीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाब ॾे। केटीए न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। कलम धणी जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़ियुनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे। अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करायो वञे। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कारवाइयूं मुकमल तौर ख़त्म न थियूं आहिनि। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त मिड टर्म चूंडनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयारु आहे। सफारतकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी चयो आहे त तहरान जंग जो चाहे थो। आबिदा अर्म्स खोलण लाइ बि तयारु आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझंद असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। बलोचिस्तान में मज़दूरी लाइ वियल मुरीद शाख वासी 8 पोरियत अॻवा थियल पोरियत जो तालुक मुरीद शाख जे ॻोठ मिठल डहर सां आहे। वारसन मूजिबि पोरियत बचनि जो पेट पालण लाइ बलोचिस्तान में मज़दूरी करण विया हुआ। मज़दूरनि खे बाज़ियाब करायो वञे। अॻवा थियलनि में सिकंदर नौमान शमन नईम समीउ ख़ान आफ़्ताब बासित ऐं शाद अहमद डहर शामिल आहिनि।

0: मीर रज़ा के समय वडे वजीर अदालती कमीशन जे मुद्दे में वाद वारी समरी मंजूर करे वरती जरियन मौजूद वडे वजीर समरी मंजूर करे वरती आए पर सिंध काबीना का भी मंजूरी वरती वेंदी। मीर रज़ा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुद्दो गुजरे डी पूरो थी वयो। मीरपुर माथल में पुलिस हिरासत में जवाबदार फरार थियण ते टे पुलिस अहलकार गिरफ्तार। पुलिस अहलकार इम्तियाज कलवर एजाज गडाणी अल्ताफ शाह के गिरफ्तार कयो वयो। एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान टिनी पुलिस अहलकारन के क्वार्टर घाट कयो। पुलिस मुकाबले के समय गिरफ्तार फारूक बोजदार पुलिस मोबाइल में फरार थी वयो। मेयाड़ में नौजवान के कातिल की गिरफ्तारी लाए पार वारसन जो पाक किताब खड़ी प्यादल मार्च। मकतूल सजा चांडे के वारसन 3 किलोमीटर प्यादल मार्च करे प्रेस क्लब अगैं एहतजाज कयो। वारसन जो चवण है त पुलिस कत्ल केस दाखिल कराने बावजूद जवाबदार के गिरफ्तार न करे सकी। सांगड़ में कत्ल थियल नौजवान के कातिल की गिरफ्तारी लाए एहतजाज वारसन गोठाणन हसनवाज पठान के कातिल की गिरफ्तारी लाए चमड़ा रोड बंद कर एहतजाज कयो। वारसन जो चवण है त मंगली पुलिस नौजवान के कातिल की गिरफ्तारी लाए का भी कार्रवाई न कई है जवाबदार गिरफ्तार कया वन।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ते जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
2: हम छम छम किताबे लेके निकले हम अम्मी ने कहा ना रुकना तुम रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो IMF मिशन जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं. ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ऐं सूबनि खां टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू जी उगाड़ीअ ते ॻाल्हियूं थींदियूं. IMF खे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐं दहशतगर्दीअ जी फंडिंग रोकण बाबति आगाह कयो वेंदो.

नेशनल कोऑर्डिनेटर जो ॿिनि ॾींहनि वारो इजलास अॼु खां इस्लामाबाद में शुरू थींदो। एस सी ओ जे ईंदड़ इजलासनि ऐं सरगर्मियुनि जे तयारियुनि ते गौर कयो वेंदो। पाकिस्तान खे ईंदड़ साल एस सी ओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट सरबराह इजलास जी मेज़बानी करणी पवंदी। सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बणियल गुज़िरियल ॾींहं के न्यूज़ खानपुर मार जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अञा ताईं बाज़ियाब न थियो। आई जी सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति वे मुगवी साफ़ीअ जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवणु आहे त किरोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवणु आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया ॻणितीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाब ॾे। न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, नौशेरो, फिरोज़, उबावड़ो, मीरपुर माथेलो, ठरी मीरवा, चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाज। खेरपुर, दोदापुर, कुंभत, दड़ो ऐं तलार में बि कलम धणनि जो एहतजाज। सखर में बि वकीलनि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ जो मुतालबो कयो। कलम धणनि जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़ियुनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे। अज़ीम सियाल खे फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे। अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त उमेद आहे त अमरीका तर्फ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कारवाई मुकमल तौर ते ख़तम न थियूं आहिनि। मिड टर्म चूंडुनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि।

पाण अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयार आहे। सफारतकारीअ ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबना हुर्मुज़ खोलण लाइ बि तयार आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझमंद असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदी हटाई वञनि। बलोचिस्तान में मजदूरीअ लाइ वियल मुरीद शाख वासी अठ पोरियत अगवा थियल पोरियतनि जो तालुक़ु मुरीद शाख वेझो ॻोठ मिठल ॾर सां आहे। वारसनि मूजिबि पोरियत बचनि जो पेट पालण लाइ बलोचिस्तान में मज़दूरी करण विया हुआ। मज़दूरनि खे बाज़ियाब कराए वञे अगवा थियलनि में सिकंदर नोमान शमन नईम समी आफ़ताब बासित इंशाद ऐं ॿिया शामिल आहिनि। मीर रज़ा केस में वॾे वज़ीर अदालती कमीशन जे मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि वॾे वज़ीर मुराद अली शाह अदालती जांच जी मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती आहे, पर सिंध काबीना खां बि मंज़ूरी वरिती वेंदी। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुदो गुज़िरियल ॾींहुं पूरो थी वियो। मीरपुर माथेलो में पुलिस हिरासत मां जवाबदार फरार थियण ते टे पुलिस अहलकार गिरफ़्तार। पुलिस अहलकार इम्तियाज़ कलवड़, एजाज़ गडाणी ऐं अल्ताफ शाह खे गिरफ़्तार कयो। मां फरार थी वियो।

0: गिरफ़्तारीअ लाइ चमड़ाऊ रोड बंदि करे एहतजाज कयो। वारसनि जो चवणु आहे त मंगली पुलिस नौजवान जे कातलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ का बि कार्रवाई न कई आहे, जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।
1: अॼु ई टपाल मेज़बान ख़रीद करियो, व्हाट्सएप ते जमालो लिखी 021111827225 ते मोकिलियो। पैक जो पंज अंगनि वारो मुनफ़रिद कोड दाख़िल करियो, पोइ पंहिंजी मालूमात मोकिले प्रोग्राम में शामिल थियो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप लोगों के लिए फन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, आप लोगों के साथ गाने होंगे जनाब मजे मजे के, और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ की जाएंगी बातें जो कि आप लोगों के लिए होने वाली है, आप लोगों के साथ ही होने वाले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं, तो वो इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई बहुत सारे अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करके देखे होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छा और एक प्यारा सा प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं और क्या आप इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं, ये आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है वाकई जो बताना चाहिए भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आप भी अपनी स्किन से लेकर थोड़ा सा परेशान है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के चेहरे पर आ चुके हैं, तो उन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाने के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो होगा वो क्यों जरूरी है, ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाला है, और आपका हमारा साथ होगा जनाब पूरे 3 बजे तक। तो पूरे 3 बजे तक मैं आपको लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले। तो तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया, और इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, यू आर जे एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलिए जी, रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में फन करने के लिए, प्रोग्राम में बातें करने के लिए, और प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे 2 घंटों का। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आके फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं जनाब, अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस, आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं, और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा कलाम यहाँ पर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो जनाब बताते हैं कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। ओके, सो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: क्या बातें आप सुन रहे हैं। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और आप लोगों को बताया जाता है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं और कितनी सारी आपको खूबसूरती मिलने वाली है जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगर आप मर्द हजरात खवातीन ने सारे लोग अगर हमारे साथ मौजूद है तो तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं और सारे लोगों के लिए है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बताते हैं तफसीलन बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो वो किस तरह से होने वाला है प्रोसेस वो जरा समझा देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बताते हैं। ओके जनाब, तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे बताएं दुनिया का पहला फोन जो था वो किस कंपनी ने बनाया था। मोबाइल के बारे में बताना है, फोन के बारे में नहीं। ठीक है, तो दुनिया का पहला जो मोबाइल फोन था वो किस कंपनी ने बनाया था। ऐसे के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 आपने सर्च कर देना है। ठीक है, जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए हमारे साथ मौजूद है और आप ही प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने क्या सोचा है, इस्तेमाल कर रहे हैं या खाली प्रोग्राम सुनने वाली समाते हैं। तो भाई खाली प्रोग्राम सुनने वाली समाते मत बनिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले भी बनिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है ना, ये बड़ी कमाल की प्रोडक्ट्स है। आप लोगों ने बेशक बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगाकर देखे लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मैं इतना क्यों बताती हूँ उनके बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स है जनाब, जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और उसके साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। ये डी स्किन के दो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है और जनाब ये क्या ही कमाल का इसका फार्मूला है, क्या ही कमाल तरीके से इसको तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो बातें पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊंगी वो जरा गौर से सुनिएगा और जरा शोर से भी सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी इस तरह की हो चुकी है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट लगाने से थोड़ा सा घबरा चुके हैं या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई हम कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, वटा गोश नहीं है खाना, छोटी नो ना नहीं कहने, बस आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लेना है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप लोगों को जो कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना वो बस देखने काबिल होते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, दिल खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। और क्या होगा जनाब ये प्रोसेस के किस तरह से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो आपको पूरे प्रोग्राम बिल्कुल जी नंबर्स बताए जाएंगे और नंबर्स के ऊपर आपने राता करना होता है, कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे और आप लोग उनको बताएंगे कि भाई साहब आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो वो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा देंगे। तो ये आसान सा सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है जिसको आपने बस प्रोग्राम सुनकर ही नोट कर लेना है और हमारे प्रोग्राम में साथ रहिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक। यहाँ पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, फरवा हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, आप भी तमाम जा माँ उम्मीद थी कया तमाम ठीक ठाक हूँ आमीन सुमामीन जी जी। और शायर केसवर खरल हमारे साथ है, शायर केसवर लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम केसिया, मैं ठीक हूँ, कहते हैं माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू वेरी मच शायर केसवर खरल। और फरवा कहती हैं आप ही अर्ज किया है, दिल धड़कता है तो डर सा लगता है कोई सुन ना ले मेरी धड़कनों में नाम तेरा। अल्लाह, लालू हमारे साथ है, लालू भाई हेलो, और आपने लिखा है कि नाइस शो, थैंक यू वेरी मच लालू भाई। और हमारे साथ ही अर्श मोहम्मद गोला भाई जिला जेकब आबाद से कहते हैं कि पसंद खान गोलो खान, अर्श मोहम्मद गोलो, अजहर अली और मजहर अली गोलो, जबरदस्त कंपेयरिंग लाजवाब प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारा भाई। अच्छा तमाम पोस्ट के लाइक और शेयर करना हलो ठीक है दीदार अली बिरोही कहते सलाम आरजे सिद्रा केसी हो दीदार बिरोही फ्रॉम खान मोहम्मद बिरोही से दीदार भामा ठीक है मजे में आयो और अबू हनीफ अल बलोची हमारे साथ है गुड आफ्टरनून सिद्रा मैम थैंक यू वेरी मच आपको वेलकम कहते अबू हनीफ और तारिक खान हमारे साथ मौजूद है तारिक भाई कहते नाइस यू थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई जैन अली लिखते हैं कि जो तुम्हें देख के भी किसी और को देखे वो एक तमाशा ही है तालिबे दीदार नहीं बिल्कुल आपने सही कहा मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है गुड आफ्टरनून एंड वेलकम दिल से माई स्वीट बुआ जी आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई जी और जी शाजिया अली हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम शाजिया वेलकम कहते हैं आपको भी लिखती हैं कि आप ही अर्ज किया है तुम्हें देखना मेरी आदत नहीं अब मेरी इबादत बन चुकी है जितना भी आपको देखूं दिल फिर भी कहता है एक बार और देखूं अल्लाह लालू हमारे साथ भाई कहते हैं नाइस यो थैंक यू वेरी मच और शाजिया कहती हैं शो लाइक और शेयर कर दिया है बहुत शुक्रिया शाजिया और फहीम भाई कहते हैं कि कदें भी तोते दवार दिल जान बूटबा तू भली हली आ बल लुड़का आला तदहीं भी हुंदा मता चई आजिया न थींदी शेख अयाज वाह वाह वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अदर कहते अदा छा हलाए खुश आयो सफ़र चा को सलेट कलम मसजी डबी अदा असां कराची खां इस्लामाबाद पहुता आहियूं वरी कुझु ॾींहं में कराची ईंदासीं घुमण विया आहियो या कम जे सिलसिले में विया आहियो ऐं ॿियो हाल अहिवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम साण खणी विया आहियो या फिर ईअं खाली विया आहियो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा रहो बाबा चाहे तव्हां किथे बि हुजो किथे बि रहो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पुछाईंदा बि रहो त किथे किथे मिलनि था ऐं अगरि उते नाहिनि अवेलेबल त तव्हां नंबर ते राबितो करे उते बि अवेलेबल कराए सघो था ठीकु आहे अली रज़ा लगारी भाई हमारे साथ है गोठ जाम खां लगारी से अली रज़ा लगारी भाई वालेकुम अस्सलाम और मैं ठीक हूँ कहते हैं तमाम नाइस शो है आपका मुझे पिरी जी तू अच्छा चली आपने गाना लिखा है डेडिकेट अजहर लगारी आकिब लगारी आजम लगारी मजहर लगारी अनवर लगारी आरजे गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर इमाम बख्श खोखर सिस्टर सिद्रा भाई वालों को बोलो कि जाते हुए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेके जाएं तमाम अच्छी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाँ जी बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ तो ऐसा वैसा प्रोडक्ट तो नहीं बताऊंगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप सारे लोग इस्तेमाल कीजिए तमाम भाई लोग तमाम बहने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं और नजीर भाई हमें सुन रहे हैं बलोचिस्तान से भाई को वेलकम कहते हैं फहीम कहते हैं अदा फरवा खां पुछो फारवा खाए थी या न फारवा आना कौन आया है जदी मौसम इंदी तो फरवा जरूर फारवा खाएंगी दातुल अहमदानी वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूं कहते हैं कॉपी सॉन्ग हां जी बिल्कुल लगाते हैं आपके लिए और ऐसे ही आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए टाइम हुआ जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तो ब्रेक लेते हैं जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो ब्रेक ते पेर भी लाजमी हों है बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया कौन मूंखे कमेंट में ॿुधायो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु करण जो इरादो कयो आहे या न इहो बि मूंखे कमेंट में ॿुधायो ऐं किथे किथे मिले थी ऐं कोन थी मिले इहो बि तव्हां मूंखे कमेंट में ॿुधायो जल्दी जल्दी ॿुधायो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और खूबसूरत हो जाइए
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बैंक
4: This program is brought to you by
3: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु गॾु इस्तेमालु करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
6: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
7: सुनते रहो जी एफ एम 90.8.

सुंदर जानी आप कैसी हैं, मैं बहुत खूबसूरत, आप बताएं आप कैसी हैं। कहती कि दुआएं आपके लिए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको वो सब दे जो आप दुनिया और आखिरत में चाहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मुस्कुराने की इतनी वजूहत दे कि आप पिछली तकलीफें भूल जाएं, आमीन। और कहती कि मेरी दुआ है कि अगले आंसू आपकी आंखों से खुशी के आंसू आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसा मुस्तकबिल दे कि आप माजी के सारे गम भूल जाएं। अल्लाह पाक आपके लिए हर काम में आसानी पैदा करे, आमीन आमीन सुमा आमीन। सारे लोग आमीन बोलिए भाई, देखे कितनी प्यारी दुआ दी है मैंने निदड़ी ने। और दूसरी निदड़ी ने दो निदा है, ये दर्दे दिल का नाम भी निदा है। और चाचा कहते हैं कि बहुत कुछ सोच रखा है बेटा सिडो हमने डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो वो तमाम चीजें मेरे साथ शेयर कीजिए। आपने क्या क्या सोचा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में? अख्तियार अली गब्बर भाई हमारे साथ है और आप हमें सुन रहे हैं।

जी बलीज मोहम्मद उस्मान से भाई को वेलकम इन खुश आमदीद कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि तू जो आजकल के बार बार के टॉपिक खबर आ है, अच्छा यानी कि तवा के जवाब अच्छे तो हाँ पर ऐसा निदड़ी के तनथ हो जाए यानी कि निदड़ी बार बार खा मिच तो आप मुझे बताइए टॉपिक का जवाब क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान भाई कहते हैं टॉपिक जो जवाब देने हुआ है ओके। और मीर मोहम्मद बरोही भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और जैन अली आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ओके हो गया जी। महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, कहते गुड आफ्टरनून मैम आरजे, वेलकम सर। किशोर भाई कहते हैं आज टॉपिक पे अच्छा कहती है जो टॉपिक ही रख, चलो ठीक है ये टॉपिक रखूं था बाबा, टॉपिक चेंज कयो वने तो पर बे जेको कलाक मिंदासी ने तो उनमें ता वरी ने टॉपिक जो जवाब दे जो नाचो सारे मिल तो एक इंसान के के चीज जो गुरूर हुंदो आहे हुस्न जो पैसे जो या बे कुछ वरी छातो थी सके हुस्न ही पैसो ना जेते इंसान मस्ती कंदो आहे सो तामो के बुदा एक इंसान के गुरूर आखिर के चीज जो थी सके तो हुस्न जो या वरी पैसे जो वरी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो भी थी सके तो सम सीज आई एम स्वीटी।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए आप मुझे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे नहीं भाई, वो मुझे मुजरम लगते हैं जो डे स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाते। अरे मुजरमों को सजा दो, डे स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों नहीं लगा रहे।

अरे भाई ये हुसन आपको मिला है, ये मेहरबानियां है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताइए आप भी लगा रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा जनाब। आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि लोग आपसे मुड़ मुड़ कर पूछेंगे कि भाई बताएं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताइए ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का।

हाँ बाबा गाल तो वैसे दी लगाती हूँ कि मैं तो गाने में मस्त हो जाती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स कौन पड़ेगा, तो मैं ही पढ़ूंगी। वापस आ जाते हैं जी, और हमारे साथ यहाँ पर सुनील कुमार महाराज कहते हैं डी स्किन क्रीम अवेलेबल। सुनील कुमार जनरल स्टोर कंडियारी। ओके जी, जितने भी लोग हमें कंडियारी वाले सुन रहे हैं वो सुनील भाई के जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, तो जाइए और परचेज कीजिए। महर इरफान सियाल साहब कहते हैं गुड शो मैम, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा मीर मोहम्मद बिरोही भाई, थैंक यू आप हमारे साथ। अब्दुल रजाक कुंभर भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद कुंभर भाई कहते हैं बहन सिद्रा कैसी हो, बिल्कुल चाक को हाँ सफा चाक को सलेट। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मोहम्मद खान में इस्तेमाल कर रहा हूँ या मोहम्मद खान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा चले ठीक है, सब इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रही है तो जो नंबर आपको बता रही हूँ ना उसके ऊपर रब्ता जरूर कीजिएगा। रब्ता करने से ये होगा फायदा कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर से इजीली जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं। फरवा हमारे साथ आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। फहीम भाई कहते कहता लाड़काना में पाकिस्तान चौक थे फारवन जो जूस एंड फारवा मिलन था, फरवा के बुधायो हेडे होडे न मने फारवा वठण। अच्छा सही आ बुधो नो फरवा। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं डी स्किन वाह वाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम चो बाबा सलो नालो वठो इधर डी स्किन ब्यूटी क्रीम पूरो नालो वठना तरी तांगे दुकानदार भी नींदो, अगर तां अध नालो वठना दुकानदार कंफ्यूज इन पोस्ट तांगे कोई भी प्रोडक्ट नहीं छरीदो तां पूरो नालो वठो तांगे खबर रे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मथा जे को ना डॉक्टर माई जो फोटो आ है। इस्तेमाल करती रहिए। और अख्तियार अली गब्बर भाई बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद यूसुफ पंवर भाई हैं गोट अच्छा मीरपुर बेहतरीन प्रोग्राम सलामत रहो क्यों प्यारा भा तहां जो गोट मुखे समझ में आयो सो मोहब्बत एंड सोने भाजू प्रोग्राम उतु पया। और फरवा थैंक यू सो मच ताम अमताज मले जो गानो बुधो था बुधन चायो था मां कोशिश क्या दी हलाइंदस गानो। और न खा अलावा चाचा खालिद कहते हैं असां गरीबन जा कमेंट मथे हल्या वया अदा साईं कोन वया न अदा साईं तां सबर कंदा का थोड़ो अदा साईं।

जनाब और यहाँ पर आप टॉपिक फॉलो कीजिए. टॉपिक जरा चेंज हो चुका है. आप मुझे बताएं कि एक इंसान किस चीज को लेकर गुरूर करता है, पैसे को लेकर या फिर हुस्न को लेकर? क्योंकि हाँ, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान गुरूर कर सकता है. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर करते हैं. तो हुस्न पर गुरूर करना ये अच्छी बात होती है या नहीं, ये तो वैसे हम बताएंगे आप लोगों को. लेकिन आप मुझे बताइए कि एक इंसान आखिर किस चीज के ऊपर ज्यादा गुरूर करता है, पैसे पर या फिर खूबसूरती पर? अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि पूछते हो ना तुम क्या पसंद है मुझे, देखो मेरी पहली लाइन का आखिरी लफ्ज. ओके वासु भाई हेलो. रशीद खोसू भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. वासु भाई कहते मुझे प्यारी भेड़ केड़ा हाल है तवा जा प्यारा भा मैं ठीक है तहाँ की आयो. नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते कि टॉपिक नहीं आता क्योंकि मैं तब नहीं था ना इसीलिए. ये भी बात है. अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं मेलसी से, खुश आमदी प्यारे भाई. डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करी नहीं भाई, कुछ लोगों का तो तुक्का भी काम आ जाता है. वसीम भाई हमें सुन रहे, टॉपिक का जवाब दिया है बढ़िया. कहते आपका शो वीआईपी है, थैंक यू. हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई. और मुजाहिद मलिक हमें सुन रहे, कहते सिडो अच्छी वयासी महफिल में वेलकम त कंदी कर पक्की. वेलकम बाबा वेलकम, तांके भली करी आया, खुशामदीद स्वागतम. पक्की कोनिया पक्की कोनिया. अच्छा चाचा कहते बेटा सिडो और सुनाए क्या हाल चल है. अब कराची में गर्मी कम है तो अब डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे और सोना मोना हो जाएंगे. बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के लिए आपको सर्दियों का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप हर सीजन में लगा सकते हैं. मेडिकेटेड फार्मूला है तो लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए. मलिक नजर हुसैन भाई हमें सुन रहे हैं, लाजवाब प्रोग्राम बहुत शुक्रिया. निदड़ी कहती है कि निदड़ी मैं हूँ बस, हाँ हाँ तू तू बस, थदो दे थदो फकीर. दर्दे दिल कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम खूबसूरत नहीं बहुत खूबसूरत हो. आईली मेरे को लगा ले छाती चले. अच्छा दर्दे दिल कहती है कि आए हाय आज आते ही इंजॉय करवा दिया, डांस करने को दिल कर रहा है आज डीजे फुल आजादी में. हाँ बाबा मुखे लगे तो आज मैं आजाद आया. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब आप सारे लोग गानों की फरमाइशें कर देते हैं ना तो मुझे लगता है कि ये भाई क्या मैं करूं अब, किस किस के गाने लगाऊं. तो जब मुझे लगता है कि भाई आज नहीं होगा गाने प्ले तो मेरे को लगता है भाई आजादी हाय एंजॉय करो अपनी आजादी. तो अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगी, आप जरा मौजूद रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा. अगर आप इस्तेमाल करें तो मुझे बताइए आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं और टॉपिक को फॉलो कीजिए और साथ साथ मौजूद रहिए क्योंकि यहाँ पर टाइम हुआ है न्यूज ब्रेक का. उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते. आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ मौजूद रहिए और सुनते रहिए और साथ दीजिए. मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं. So stay tuned, stay connected and keep listening. White Asian D-Skin Beauty Show is sponsored by D-Skin Beauty Products. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
1: या पंहिंजी पुरानी गाड़ी विकणण चाहियो था त पोए अचो बालाज
3: पर उन्हें वहीं पर रोका जा सकता।
4: देखिए पहली बात यह है कि सरफराज मुफ्ती एक बहुत बहादुर और बहुत अहलियत रखने वाले वजीर आला हैं। आप नेशनल एक्शन प्लान पे उनकी मीटिंग्स देखें। मैं आपको कहता हूं, आपने सवाल किया ना, काश आप रिसर्च करके आते तो आप ये सवाल करते ही ना मेरे से। आप कंपेरिजन कर लें कि पिछले एक साल में सुहेल अफरीदी की नेशनल एक्शन प्लान पे कितनी मीटिंग्स हैं और सरफराज बुगटी की कितनी मीटिंग्स हैं। दूसरा, सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दी की तदारक के लिए कितनी इक्विपमेंट अपनी पुलिस को लेके दी है, कितनी ट्रेनिंग्स करवाई है, कितना अपग्रेड किया अपनी पुलिस को, और सुहेल अफरीदी ने कितना किया। तीसरा, वफाक से उन्होंने अफसर मांगे, उन्होंने कहा अच्छे अफसर दें, पुलिस अफसर दें। उधर तो भाई मेरे डिप्टी कमिश्नर शहीद हुए हैं, आप क्या बात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर सामने खड़े होकर शहीद हुए हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरा इक्विप किया है, ना सिर्फ अपने सिविल अफसरान को, पुलिस के अफसरान को। तो जमीन आसमान का, हक और बातिल का, सच और झूठ का फर्क है वजीर आला सरफराज बुगटी और सुहेल अफरीदी के दरमियान। और मैं समझता हूं कि सरफराज बुगटी को सलाम पेश करना चाहिए जो बहादुरी, अहलियत और तमाम तर अपने मसाइल बरूए कार ला रहा है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क रहेगा, ये फर्क मिट नहीं सकता।
3: सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की बात है देखने में आ रहा है, पिछले चंद सालों में बेशतर में अफगानी नेशनलिस्ट जो है नेशनल मारे जाते हैं और पाकिस्तान प्रूफ भी देता है उनकी डेड बॉडी भी अफगानिस्तान लेता है, काफी करता है, बाद में ले भी लेता है, ये बड़े बड़ा वादे है। सर, 2018-21 की दुनिया जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी सर, जिसके तहत वापस बनाए गए थे TTP के लोग, आपको याद होगा। उसके बाद की दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो आप क्या समझते हैं वो जो पॉलिसी थी उससे बहुत बेहतर है के लिए जो आज की जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे शायद बहुत ज्यादा पॉलिसी है।
4: देखिए ये तो हकीकत है कि इन्हीं के बानी ने वो पॉलिसी वजह की थी कि दहशतगर्दों को वापस ला के सेटल टेरियर में बसाया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और पूरे मुल्क के अंदर नेशनल एक्शन प्लान मुकम्मल तौर पे फाल तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा था और 2017 तक दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका हुआ था तमाम एरियाज से। तो ये जो दहशतगर्दों को वापस ला के बसाया है, ये तालिबान खान ने ला के बसाया, क्योंकि उनकी एक हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इन दहशतगर्दों के लिए और वो सॉफ्ट कॉर्नर खत्म नहीं हो सकता। आउटलुक लिबरल है, अपने सपोर्टर्स को लिबरलिज्म की तरफ लगाते हैं, अंदर से जो है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान और तरीके तालिबान अफगानिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत पाई जाती है इनके दिल में। तो वो पॉलिसी जिस तरह बनी थी, और ये क्योंकि मैं अहमी तो नहीं कहता कि TTP की भी टीम, तो ये उन्होंने उस वक्त उसको इम्प्लीमेंट किया और अभी भी सुहेल अफरीदी भी कोई उससे फर्क तो नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी वाजे एक हकीकत है कि उस पॉलिसी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। इन्होंने 2018 में आके कहा कि ये तो अमन हो गया, ये तो हमारे भाई हैं, इनको वापस ला के बसाओ, तो बड़े अच्छे लोग हैं और ये अच्छाई सामने आ रही है पूरी दुनिया के सामने।
3: बार बार विफाक हुकूमत की तरफ से बात की जाती है कि केपी गवर्नमेंट ने आखिर में दहशतगर्द जो है मुस्लिमों की तादाद में या जितनी भी है उनको बसाया गया, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपकी तरफ से उन दहशतगर्दों की वो पूरी लिस्ट जो है वो या तो जारी की जाए या साथियों को फराम की जाए ताकि बिल्कुल मन फरार ये चीज पे उसे तो जाए, क्योंकि विभाग कहता है कि आपने दहशतगर्दों को वापस ला के बसाया और सुहेल अफरीदी कहते हैं कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, बल्कि विभाग का फैसला था अगर किसी को वापस बसाया गया।
4: देखिये, दहशतगर्दी की जंग के लिए नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान और तमाम हुकूमतों के दरमियान। उसमें सारी काइनेटिक, नॉन काइनेटिक दोनों किस्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी कंप्लीट डिटेल, उसका तरीकाकार मौजूद है। नेक्टा, नेफ्टेक्स जो कि हर सूबे में बन चुके हैं, इस तरह की सारी लेकिन आगे मसला यह है कि एक इंफॉर्मेशन देने के बाद उस पर अमल दरामद के लिए आपको सर्टन चीजें चाहिए जिसके बगैर आप मौजूदा जदीद दौर में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आपको फोरेंसिक लैब है, आपके पास सेफ सिटीज हैं, आपके लोग की ट्रेनिंग है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनके पास इक्विपमेंट है। अगर आपके पास इक्विपमेंट भी ना हो, आपके पास इस तरह की सेफ सिटी फ्रेंसिक लैब, वो एक जो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कि तकरीबन हर सूबे में हर जिले में मौजूद है और आज भी केपी के आधे से ज्यादा जिलों में मौजूद नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये बेकार हो जाती है और उसके बाद आपका सियासी फैसला ये हो कि आपने एक नरम रवैया, एक अभाम सी सूरत हाल रखनी है और ताकि ये उन लोगों को फायदा हो सके। तो मेरा ख्याल है कि ये 14 साल, अभी एक क्वेश्चन किया गया कि बलूचिस्तान और केपी में क्या फर्क है, भाई एक हुकूमत 14 साल से लगातार एक ही पार्टी की हुकूमत है और दूसरे सूबे में कई पार्टियां दो दो ढाई ढाई साल की सिर्फ हुकूमत करके बैठी हैं, तो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। 14 साल के वसाइल और 14 साल में ये वाला मामला जहां का था वहीं से बढ़ के अब सामने आ रहा है और अब इन्हीं की नलायकी की वजह से पूरे पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ।
5: पुलिस एक जानब जो है वो इतनी केपी के में कुर्बानियां दे रही है, दूसरी जानब क्या असेंबली के जरिए उन पे जो है वो इस किस्म की कार्रवाई लगाई जा रही है कि उनके काम में रुकावट डाली है?
4: जी प्लीज।
5: वजीर
4: दाखिला
5: साहब ने 1 अरब रुपए की डिमांड की है अखराजात की 27 सितंबर तक जो अखराजात हुई है, इसके अलावा अब 4 अप्रैल को वो दोबारा आ रहे हैं, क्या भी उनकी पेमेंट वो अंदाजा गवर्नमेंट ने आपको देनी है या क्या करें? माफी ने गुजारा।
4: देखिए बात यह है कि जी जी जी जी
6: सर ये बताएं कि टेररिज्म का मैंने बताया कि 2014 से बाद जब दहशत से काम रहा था, 24 साल के बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया था अपने बारे में, और उस मेहरबानी की रियायत पूरी तरह शामिल थे प्रवेश के और पूरी उनकी तजावीज, उस पर 3 सीटों पर अब तक अमल नहीं हुआ। जो स्टैब्लिशमेंट है वो कहती है हमारा तो नंबर 1 एजेंडे में हमारा है ऑपरेशन, जो सिविली नजारे हैं वो क्योंकि मुल्क पार कर रहे 3-4 साल आपके लिए मुल्क में हो गए हैं, जो खामियां फेडरल गवर्नमेंट की आज तक वो आप बताएं कि क्यों नहीं हुई, तो जो प्रोविंसेस की हैं वो आप एलाबोरेट कर देंगे तो उनके सामने सही है।
4: जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए पहली बात वो कानून की है, तो ये कानून बेसिकली पुलिस को पीटीआई का सियासी विंग बनाने की तैयारी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ना हो और मैं अपने किसी जिले के हेड को डीएसपी भर्ती कर लूं। देखिए ना, डीएसपी डायरेक्ट भर्ती करने का इख्तियार सूबाई हुकूमत क्यों चाहती है? वो ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कोई कमांडोज भर्ती करने हैं बतौर डीएसपी, या देखना है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो बहुत मुतहरिक लोग हैं उनको।
7: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: सिंध के माथे का झूमर
9: GAFM 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

खूबसूरती पर या फिर पैसे पर। अच्छा कॉल्स लेना मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की। कॉलिंग नंबर है जनाब 03322 13 22 and 88।

0: ओके सलाम से यहाँ पर फर्स्ट कॉलर हम देखेंगे फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है देखते हैं हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो आवाज आ रही है हेलो आवाज अच्छी पियो शायद इस कॉल में थोड़ा मसला था अच्छा कॉल करिए तो इस जगह पर जाकर खड़े हो जाएं जहां पर आपको लगता है कि भाई यहां पर हमारे यहाँ नेटवर्क सही आता है और कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉलर की जाने बातें देखिए कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो जी वालेकुम अस्सलाम केयर मौजूदा ओके ठीक आयो अदा मजे में प्रोग्राम बुधो पे प्यारा भा अच्छा केड़ो प्रोग्राम कंदी आया नालो बालो अचे तो प्रोग्राम जो
1: प्रोग्राम जे नालो है राइट एक्टिविटी क्रीम
0: वाह वाह आई बियो बी केड़ी क्रीम जे बारे बुधाईंदी आया
1: चलो
0: ही भाई पान में भा भेण वाइट एश वो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो सही भा डी स्किन भेण वाइट एश जी याद करे वेठो ओके थैंक यू सो मच प्यारा भा मोरो का तवा कॉल कई सोनी भाजी कॉल हुई माशाल्लाह वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना है आई तवा केडी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर पाए मोके लाजमी बुधाइना कयो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई या कोनी यो भी बुधायो ही वारी कॉल भी वठूं ता दिसो के रस्ते से वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम केर मौजूदा वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम का आगे ते न वदना त असा कॉल करे छदीना सी नेक्स्ट कॉलर आहे जी केर दिसू था हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: आवाज अचे तो वालेकुम अस्सलाम केर मौजूदा मुझे आवाज न तो ये तो लेटेस्ट न्यूज हो गई अदा तांजो आवाज सफा बिल्लो पे अचे काश मुझे आवाज भी तां भलो अची हाँ कॉलिंग नंबर जनाब 0332132288 नेक्स्ट कॉलर दिसूं था केर एस एस गड आए हेलो जी अदा तांजी कॉल लगी वही ये इतने मसरूफ लोग भी होते हैं कि भाई कॉल करके भूल ही जाएंगे भाई हमारी कॉल तो लग गई है लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे ओके जी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये आप लोगों से हम जानेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों जरूरी है ये तो मैं वैसे ही आप लोगों को बताती रहती हूँ तो नेक्स्ट कॉलर हम पिक कर लेते हैं देखें कौन मौजूद है हेलो जी अस्सलाम वालेकुम
3: हेलो
0: हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम केयर मौजूदा
3: हेलो
0: जी आवाज अचे तो लगे तो असा हाँ स्टूडियो पन चेंज करो आवाज अचे तो हेलो भाई अब लग रहा है कि हमें अपना स्टूडियो चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि लोगों की आवाज़ सही आ रही अब हमारी आवाज़ नहीं जा रही है ये मसला था जो हमें लगता था कि भाई फ़ोन चेंज करने से ऐसा हो सकता है कि भाई लोगों की आवाज़ सही आ जाए लेकिन ये हो गया कि भाई लोगों की आवाज़ तो सही आ रही लेकिन अब हमारी आवाज़ नहीं जा रही है क्या लॉजिक है भाई चीज समझ नहीं आ रही ओके सो कॉलिंग नंबर 0332132288 अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर सही जगह पर जाकर कॉल कीजिए ताकि भाई आप लोगों की जो आवाज़ ही ना वो यहाँ पर सही आ सके और आपको मेरी आवाज़ भी सही मिल सके नेक्स्ट कॉलर देखें कौन हमारे साथ मौजूद है जी हेलो हेलो जी
2: हेलो
0: जी आवाज़ अच्छी दो ब्रो लग रहा है कि भाई अब ये कोई कश्मीर का मसला बन चुका है अब कॉल ही शायद प्रोग्राम में लाइव लेना तो हम देखते हैं इस चीज़ को ज़रा अब क्या करना चाहिए ये आवाज़ उन लोगों की नहीं आ रही थी तो फ़ोन चेंज किया अब हमारी नहीं आ रही तो हमें स्टूडियो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यही हल मुझे नजर आ रहा है. वेल, देखते हैं क्या करना चाहिए इस चीज का. वैसे तो हाँ जी, प्रोग्राम में कॉल्स लेना चाहिए, ये कहा गया है, जरूरी है कॉल्स लेना प्रोग्राम के अंदर. तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कॉल जो है ना वो थोड़ी अवॉइड करती हूँ प्रोग्राम के अंदर. वेल, यहाँ पर आप लोग डेज कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे ही नहीं, वो जरा मुझे बताइएगा. डेज कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए हैं या फिर नहीं, ये भी आप मुझे बता दिया करें. क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं. तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए भाई. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है. और सबसे बेहतरीन बात, ये मेडिकेटेड फार्मूला है. तो मेडिकेटेड फार्मूला है तो भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए. अच्छा, मेरे पास एक गाना है तो साथ साथ हम जरा गाना भी सुनेंगे. ये गाना है जी एआई का गाना. तो एम ही आकर कोई ना बोले इंडियन गाने लगा रही हो, नहीं भाई एआई का गाना है. तांबा तांबा. और इसी के साथ साथ फरवा कहती है जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर हुस्न पर बड़ा गुरूर करते हैं. अच्छा चाचा, आपका जो दूसरा टॉपिक का जवाब था ना वो ऊपर चला गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया. और किशोर भाई कहते हैं कि शुक्र है मुझे नाले जा पैसा कौन था हलन, न था मानो हु भी रोटा थे वो शलना गाल में दम आवे से पोसा अमीर हो जाऊंगा.

अच्छा नियाज मोहम्मद भट्टी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप मटियारी से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। हनीफ अल बलोची लिखते हैं कि लिखता हूँ तो तुम ही उतरते हो कलम से, पढ़ता हूँ तो लहजा भी तुम, आवाज भी तुम। हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। तालिब मरी समारू भाई हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक इंसान के पैसे जो गुरूर ज्यादा हूं है चवंदा आहिने न हिन के पैसे जी मगी आहे, हाओ मां बुधो पैसे जी मस्ती हुंदी आहे। और सही था चो, वैसे सही था चो। और हमारे साथ ही स्मार्टू गोपांग, वालेकुम अस्सलाम। निदड़ी कहती है कि भाई लड़कियों को हुसन पर गुरूर होता है और लड़कों को जो है वो पैसों पर गुरूर होता है। अब इस बात में पता नहीं कितनी सच्चाई है, वो तो आप ही बताएगा। और डीस्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, ये भी आप ही बताइए।

वफा अब्दुल वहीद जतोई भाई, आपको भी वेलकम के थे स्टिकर्स सामने शेयर कर दिए जी, बहुत शुक्रिया। इस वजह से लोगों के कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो स्टिकर्स थोड़ी अवॉइड किया करें, सलाम दुआ लिखा करें, दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया करें या फिर पूछा करें। और किशोर सुमाटू गोपांग, आपने जो है ना वो लिंक शेयर कर दी है, तो आज लिंक में जरा एरर आ रहा है, तो ये मुझसे प्ले नहीं हो सकती है, तो किसी के भी आज गाने नहीं प्ले होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। और शाजिया अली कहती है हानी हाने क्या कह रही हैं। एहसन अली बुक्टी भाई, आपको भी वेलकम हो गया, प्रोग्राम में मौजूद है। निजाम भट्टी कादरी भाई हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। और भाई मटियारी खां से सगर मौजूद है, मटियारी में भा तहां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिले पई हर के था, सो तहां वठी सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था।

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर किया है नहीं ये मुझे जरा बताया करें और पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें क्योंकि शेयरिंग जो होती है ना उससे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि भाई आप भी डीएस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती पे ये जो प्रॉब्लम्स आ चुके हैं ना आपके उनको हटा सकते हैं खूबसूरती को हमेशा महफूज रख सकते हैं क्योंकि डीएस के ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर आ जाती है जी चमक ग्लो और आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई वाकई अब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिल खोलकर क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूले जो होते हैं उसे हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर कॉम्बिनेशन टाइप ही क्यों ना हो तो मर्द हज़रात हैं खवातीन हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं।

0: हजार भाई ये गाना आपको डेडिकेट रहा था, आपको पसंद आते ही ना ऐसे गाने. आपको डेडिकेट. टाइम हुआ है जरा यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश.
1: This program is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. Hina mein maujood vitamin E beads aur jadid micro beads formula. Amaji skin ke banaye nikhri aur chamakdar. Sirf bindi han mein. Dark spots ke kare khatam. Aur liye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Har din har pehar. जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा,
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाएगी आपकी शख्सियत में, जो है ना वो ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में आप जनाब एक इजाफा कीजिए, छोटा सा इजाफा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐड कर लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन बाद ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, तो ये चीजें भी आप जो है ना वो याद रखा करें, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपको मिलेगी फेशियल वाली जो है ना रिजल्ट्स। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई हम कोई फेशियल इस्तेमाल करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है। इसके अंदर जो है ना ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना, इन्होंने भाई ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी 100 गुना जो है ना वो पावर बढ़ा दी है, और आपके चेहरे पर अब इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, निखार आएगा, कि जब आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलेगा परफेक्ट सा निखार। तो ये कमाल होगा जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन का फेस वॉश अगर हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि भाई हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है, ये फेस वॉश नहीं मिल रहा है। तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, बाकी तो अवेलेबल होता जा रहा है। तो फेस वॉश जो है ना ये भी बहुत कमाल का प्रोडक्ट है।

स्मार्टो गोपांग ने यहाँ पर सवाल पूछा है कि क्या मैं भी डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकता हूँ या फिर सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, डी स्किन का फेस वॉश हो या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, ये सब लोगों के लिए, यानी कि इसे खवातीन भी लगा सकती है, मर्द हजरात भी लगा सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए है। आपकी स्किन किसी भी तरह की है, इतनी ही सेंसिटिव क्यों है, उसके ऊपर आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। और साथ साथ जनाब, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तो ट्राई करके देखिए, मजे आ जाएंगे। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा फजली हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी खूबसूरत, तुम बताओ कैसी हो? यदि और बताओ, ये तो नहीं बताऊंगी। और कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके okay.

अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम एफएम की कूंज सिद्रा मुस्कान, खुश रहो हमेशा के लिए कूंज सिद्रा मुस्कान सॉन्ग सुनाए। अच्छा ये गाना आपको मैं कल सुनाऊंगी, ठीक है। और बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई जान, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। और उनका अलावा हमारे साथी चाचा खाले तमाम भी मैसेज कया पेनल ते खोड़ सारा। उनका अलावा मकसूद मला हमारे साथ कहते हेलो सिद्रा मुस्कान, मेहरापुर से आपका शो सुन रहा हूँ। आज शमन का गाना सुनाना पकड़ी अचल जी तो वो इंतजाम कया। आज किसी का भी गाना नहीं चला प्रोग्राम चुप कर रहे हो। सुबह बुद्धनासी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम भाई, टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है बढ़िया हो गया। अब्दुल रशीद मरी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बेवफा भूरो मल कोली फ्रॉम विलेज हाजी बहराम खान मरी लग फुलदियों से। ओके भाई जान को वेलकम कहते हैं, टी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा। महबूब अली मोरो सिटी से कहते हैं अच्छा नोकिया कंपनी सही है जी। दादू का इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, फायदुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और ये भाई लिखते हैं कि चाचा खालिद को सलाम, मंजूर अली खास के लिए और खैबर मोहम्मद खास के लिए झंडो मरी खास सगर मौजूद है। ओके भाई आपको भी वेलकम हो गया। और ईशा हमारे साथ कहती हैं कि शोना आप कैसी हैं, आज मेरी माँ साथ अनम की बुकी है शायद आपने लिखा है और कल शादी है, दो दिन अच्छे अच्छे गाने लगाओ, हमने इको साउंड लगाया है। ओके मैंने कोशिश करी अच्छे गाने आपको सुनाऊं। मकसूद मला कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट अच्छा मिला है, जैसे चांद की पहली रोशनी ठंडी और कूल कूल। वाह वाह वाह वाह, ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए। भाई काके जो बुदो तो माई चवियां बाबा माखड़ो डोक है बा मुझे नथा लायो पहले तो यही हमारा फेवरेट बना था तो हम इसलिए ये वाला गाना भी सुनेंगे।

सुनो जाना। उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन। लोग सदियों की खताओं पर भी खुश हंसते हैं और खिलते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मोहसिन। जब हो गया हो यकीन कि वो पलट कर नहीं आएगा, गम और आंसुओं ने दिया दिल को सहारा मोहसिन। वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था, अब तो पल भर भी नहीं होता गुजारा मोहसिन। उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी कैसे गवारा मोहसिन। हमने गजलों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मोहसिन। अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे जाना, वो भी क्या दिन थे कि तुझको भी संवारा मोहसिन। अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके हमने सदका तेरी आंखों का उतारा मोहसिन। हमको मालूम है अब लौट के आना तेरा, गर नहीं मुमकिन मगर फिर भी खुदारा मोहसिन। हमको रुखसत की घड़ी तक भी ना समझे, सांस देती रही हिजरत का इशारा मोहसिन। उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैं तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन, कि मैं सिर्फ तुम्हारा मोहसिन।

क्या ऐसा हो सकता है वाकई कि इंसान जो है वो जैसे पहले था वो हमेशा वैसा ही रहता, या उसने हमेशा वैसे ही रहने की कसम खा ली हो? लेकिन मुझे ये लगता है कि वक्त जैसे गुजरता जाता है इंसान भी बदलते जाते हैं, तब्दील होते जाते हैं। कुछ कमियां पेशियां तो हर इंसान में होती है, लेकिन हाँ, एक इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह पाता। आप बताएं खूबसूरती के मामले में क्या सोचा है? फेस स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे? नहीं, अरे भाई लगाइए। ज्यादा खालिद कहते ही अच्छा टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है, और कहते ही और सुनाएं क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया, आप बताएं अपने। महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ है भाईजान, बहुत शुक्रिया। गोट मोहम्मद तैयब थे हबी बुला थे भाई शो तुम चुला जवाब आए, थैंक यू। और गोट गुलाब खान लगारी से साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिजवान लगारी वालेकुम अस्सलाम शो नाइस प्लीज प्ले खालिद भट्टी सुभणी। गोट मोहम्मद तैयब थे बुला थे भाई कहते तमाम जो शो ला जवाब आए, थैंक यू प्यारा सोना भा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कौन है? अच्छा नरेश, नरेश भाई हमारे साथ है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया कहते ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चॉइस, थैंक यू प्यारे भाई। किशोर भाई कहते तुझा गाना शो के बेहतर करना है, एनर्जी पैदा करना है, डांस करण ते मजबूर करना है। ये न आकिब जरवार हमारे साथ है भाई जान वालेकुम अस्सलाम। निजाम भट्टी कादरी कहते मिलावट के दौर में अगर असली जहर चाहिए तो वो आपको सिर्फ लोगों के दिलों में मिलेगा। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। और हिदायतुल्ला कहते स्टूडियो चेंज नहीं मुल्क चेंज कर, हाँ वैसे माइक भी चेंज हो सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं। और ये हमारे साथी जी रुखसार मरी मिरपुर खासी में सुन रही हैं, कहती हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच रुखसार मरी, और आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथी हैं जी मलिक जफर, मलिक जफर हमारे साथी हैं जी, कहते हैं ओके थैंक यू। अच्छा अबू हनीफ लिखते हैं कि मर्द का गुरूर सिर्फ एक वफादार औरत होती है, या तो तमा बिल्कुल सही गाल कही। अच्छा नेक मोहम्मद पालारी भाई नूरिया बासी में सुन रहे हैं, कहते हैं तमाम जो शो वीआईपी आए सलाम तमा के सबनी लिसनर्स के, तो वालेकुम अस्सलाम।

बता दो उसको। ओके जी, शफीक अली बुग्यू भाई वेलकम कहते हैं आपको। बतूल मेमन हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। बतूल कहते हैं फ्रॉम मटियारी से। कल मैंने आपको आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाई क्योंकि कुछ दूर से मेहमान आए हुए थे, इस वजह से प्लीज सॉन्ग चलाना। सुभाणी तव्हां जो गानो ॿुधंदासीं बतूल। वसीम भाई तव्हां चौथा कहते हैं एक तेरी मुस्कान से पूरी दुनिया जो है ना वो रौनकी और रंगीन लगती है, जब तुम बात नहीं करती तो सारा जमाना वीरान सा लगता है। निदली कहती है कुरको मुरको ये सब क्या है पूजा, ये पूजा भी नहीं जानती। अच्छा मेटा ऑफिशियल हमारे साथ कहते सॉन्ग तो चलाओ, कौन सा? रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। वही भाई कहते हैं खुदा करे मोहब्बत में ऐसा मकान आए, किसी का नाम मैं लूं और लब पे तेरा नाम आए। अदा असा समझी वयासी तवा न समझो। ता बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। और आकिब जरवार भाई आप हमें सुन रहे हैं जी, कहां से सुन रहे हैं? और बताएं आपके एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हुई या फिर नहीं?

हाँ जी, क्योंकि इश्क जब आता है तो कोई दस्तक नहीं देता। हाय चाचा, लगते हैं कि औरत और वफादार न बाबा, मर्द सिर्फ वफादार हूं आहिनि, औरत जी वफ़ा शायदि तव्हांखे कॾहिं मिली न आहे, मिली हा त तव्हां ई न चओ हा। ये तो चीज बड़ी मतलब आम सी है कि मर्द जो होता है उसकी वफा पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन औरत के मामले में ये चीज बड़ी फेमस है कि औरत बड़ी वफादार होती है, अगर हाँ वफा करने पर आए तो। अच्छा नरेश भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आया, बहुत शुक्रिया। अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है, नाइस यो, थैंक यू। शुएब अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। शो आप हमारा एंजॉय कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, और आपको वेलकम कहते हैं। जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दें, आज प्रोग्राम में माशाल्लाह काफी ज्यादा रश था और आप लोगों ने मुझे थका दिया, और दर्द दिल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और किशोर भाई कहते कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स रब के आगे रखता हूँ तो जरा संभल कर, ऐसे लोगों से वाकई डरना चाहिए। साजिद हुसैन सुमरो भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अख्तियार अली भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अखलाक बलोच भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बस आप लोगों से इजाजत लेते ही वरी तहां से मुलाकात मुझे थे पाई जी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो फार्मूला है जो आपने कभी तक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फार्मूला है जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को जरा सेव कीजिए, और ये जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें ना इनसे जरा बचिए, उनको टाटा गुड बाय बोलिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी जिंदगी में ऐड कीजिए और खूबसूरतियां जरा जो ना वो हासिल करते रहिए, और हमेशा के लिए हसीन प्यारे और प्यारे प्यारे बनते जाइए। और वरी तहां से मुलाकात मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में थी रिजवान जागरानी भात आंच मोहब्बत हुआ, लास्ट में तहां प्रोग्राम के ज्वाइन कयो है, सो बस हाँ स्टॉप लगायो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कजो, सो मोकलानी ना है बाबू सिंसलामत सा सलाम, तला हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: फोन करे एक करोड़ बंग करियो संदन चवण आए त करोड़ बंग किथा आणींदासी कलम धड़न जो वधीक चवण आए त कलम धड़न जे अगवा जा वाकया गणतीअ जो गायण सिंध हुकूमत हुन जो जवाब ॾे केटीएन न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबे लाइ कलम धड़ी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा आया पिया वञनि घोटकी नौशरो फिरोज़ गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवाज चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाज कयो वियो जॾहिं त जरवार खेरपुर दोदापुर कुंभ दड़ो ऐं तलार में बि कलम धड़नि जो एहतजाज सखर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबे जो मुतालबो कयो कलम धड़नि जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते साहिबनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करायो वञे डाक जे बाज़ार में ट्रैफिक पुलिस ते फायरिंग टे पुलिस अहलकार शहीद वज़ीराबाद बाज़ार में ट्रैफिक पुलिस ते फायरिंग में एएसआई असमत उल्लाह समेत टे पुलिस अहलकार शहीद थी विया घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ पारां टिन पुलिस अहलकारनि जे शहादत ते डुख जो इज़हार दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ शहीदनि जूं ॾिनल क़ुर्बानीूं ज़ाया न थींदियूं केपीअ जूं हालतूं गवर्नर राज लॻाइण जहिड़ियूं आहिनि पर वफ़ाक सब्र जो मुज़ाहिरो करे रहियो आहे केपीअ जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो आहे त सदर हिदायत कई त केपीअ में गवर्नर राज लॻाए छॾींदुसि केपीअ में जंग वारी सूरत हाल आहे पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाइनि जूं ॻाल्हियूं पई करे पीटीआई जे लांग मार्च लाइ तारीख़ वरी तब्दील थींदी सोहेल आफरीदीअ खे सलाह आहे त मार्च ख़तमु करे छॾे सोहेल आफरीदीअ खां पोइ सलमान अकरम राजा बि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आश कई पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा जो चवणु आहे त लांग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो जीअं पंहिंजे फैसलनि ते नज़रसानी करे सघनि हुकूमत सां जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उन्हनि ते अमल कयो वेंदो हुकूमत सां जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उन्हनि ते अमल कयो वेंदो

में अमन न हूंदो त तरक्की कीअं थींदी। केपीअ जे अक्सर एपी हुकूमत बाबति हक़ीक़तूं जल्द वाम जे आॾो आणींदासीं। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत जो ध्यानु रुॻो क़ैदीअ जे आज़ादीअ ऐं एहतजाज ते आहे।

IMF ऐं पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। IMF मिशन नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। IMF मिशन जो चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ऐं सूबनि खां वधीक टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू जे उगाड़ीअ ते बाबति सुधारनि ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। IMF खे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐं दहशतगर्दी जी फंडिंग रोकण बाबति आगाह कयो वेंदो। शिंगाई तावन तंजीम जे नेशनल कोआर्डिनेटर जो ॿिनि ॾींहनि वारो इजलास अॼु खां इस्लामाबाद में शुरू थींदो। HCO जे ईंदड़ इजलासनि ऐं सरगर्मियुनि जे तयारियुनि ते गौर कयो वेंदो। पाकिस्तान खे ईंदड़ साल HCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट सरबराह इजलास जी मेज़बानी करणी आहे।

अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त उमेद आहे त ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कारवाई मुकमल तौर ते ख़तम न थियूं आहिनि। मिड टर्म चूंडुनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयार आहे। सफारतकारीअ ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराजकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराजीअ चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबिन अर्म्स खोलण लाइ बि तयार आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त ॻाटे ट्रोड़ महांगाई सबबि माण्हुनि जो जीअण जंजाल बणिजी वियो आहे। लेवी ख़तम करण खां सवाइ हुकूमत वटि ॿियो को बि रस्तो न आहे। असां पुठिते न हटंदासीं। असां चाहियूं था त मसइलो पुरअमन तरीक़े सां हल थी वञे। अवाम बिजली ऐं गैस जी लोड शेडिंग सबबि परेशान आहे।

बलोचिस्तान में मजदूरी लाए वेल मुरीद शाख वासी अठ पोरियत अगवा थियल पोरियतन जो तालक मुरीद शाख वेझो गोठ मिठल डहर से है। वारसन मूजिब पोरियत बच्चन जो पेट पालन लाए बलोचिस्तान में मजदूरी करण वया हुआ। मजदूरन के बाजियाब कराए वे अगवा थियलन में सिकंदर नौमान शमन नईम समी आफ्ताब बासित इंशाद डहर शामिल आहिनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अजरक के रंगों से रंगी
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: में गवर्नर राज्यों कानूनियों घुर्जियों पूरी थी चुकी आहिनि सोएल आफरीदी जे कदमन मां लगी रहियो आहे त केपी हुकूमत दहशतगर्द आफरीदी न हलंदो पीटीआई बानीअ जी आज़ादीअ खां पोइ पीटीआई खे ॻाल्हियुनि जी आश बि ॾियूं था गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो त सूबाई हुकूमत अहिड़े हद ताईं न वञे जो गवर्नर सोएल आफरीदीअ खां पोइ पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अक्रम राजा बि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आश करे छॾी पीटीआई अॻवान सलमान अक्रम राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो आहे पंहिंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थियल ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो
4: अपील था क्यों फिल फोर जो दो अठी साल के आदाद पे वे
5: अज असके धमकी मिली रो अज अस अगवा पे पे वे
6: अस भी जो है मुआशरे जो आवाज़ है मजलूम जैसे इनको को दाद फरियाद नी किथे भी सदारत नील
7: कल्चर जो एक रुपये गूंगो तलब करें यो काथो जो कानून
8: आगे कतल दींदा हाँ अगवा कर मुख्तलिफ़ मुदान पा क्या वन
9: हक सच लिखण वारा साहबी उन्हनि खे पंहिंजो सच न वणियो इन जे करे असांजे साहबी बेपाक साहबीअ खे अगवा कयो आहे
10: जेको बेपाक साहबी आहे अज़ीम ख़्याल हुन खे फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में खुटो पियो आहे फुलफा चोड़ो थो पए असां इन अगवा जी सख़्तु लफ़ मज़म्मत था कयूं
3: KTN न्यूज़ खानपुर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे अगवा खे ॿ ॾींहं थी विया पुलिस मुगवी साहबीअ खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम पुलिस जी कार्रवाई बि ॻाल्हियुनि ताईं महदूद अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ अमली क़दम न खयों अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज बणियल मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा घोटकी नौशरो फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथिलो ठरी मीरवा चक बख्शापुर ऐं बान सैदाबाद में एहतजाज कयो वियो जरवार खेरपुर दोदापुर कुंभ दड़ो ऐं तलार में बि कलम धणण जो एहतजाज सखर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ जो मुतालबो कयो कलम धणण पारां अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ जो मुतालबो केपीअ जे इलाइक़े टांक में दहशतगर्दनि जी पुलिस ते फायरिंग टे अहलकार शहीद वज़ीराबाद बाज़ार में दहशतगर्दनि जी ट्रैफिक पुलिस जो एएसआई असमत अलाए समेत टे अहलकार शहीद थिया घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ पारां टिनि पुलिस अहलकारनि जे शहादत ते ॾुख जो इज़हार दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे वारे अज़म जो वर्जा हिकु अरब वीह करोड़ डॉलर जी किस्त लाइ IMF ऐं पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं अॼु IMF मशीन नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो IMF मशीन जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं ज़रिए जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ऐं सूबनि खां टैक्स ऐं नान टैक्स बाबति आगाह कयो वेंदो

अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त उमेद आहे त अमरीका तरफ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते में ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कार्रवाई मुकमल तौर ते ख़तम न थियूं आहिनि। मिड ट्रंप ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जौहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयार आहे। सफारतकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ु न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राची चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबन अर्म्स खोलण लाइ बि तयार आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझमंद असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि।

0: सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच फोती कोटा तहत नौकरियों न डेण वारो तालीम खाते जो फैसलो रद्द करे छो। अदालत जो स्कूल एजुकेशन खाते के नवे डीन में फैसलो करण जो हुकुम। फोती कोटा ते नौकरी डेण वारे दरख्वास्त रद्द करण वारे तालीम खाते की इस्तदा भी गैर कानूनी करार। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के मेरिट ते फैसलो करण जो हुकुम। अदालत हुक्मनामे में चयो वयो त दरख्वास्त गुजार जे वालिद जे वफ़ात वक़्त ब साल जी हद बंदीअ वारो कानून लागू न हो। दरख्वास्त गुज़ार खे तहफ़ुज़ हासिल आहे। आबाद में वासा मुलाज़िमन जो 18 महीननि खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कंहिं बि नोटिस न वरितो। हाज़िर सर्विस तोड़ी रिटायर मुलाज़िमन 87 ॾींहं बि एहतजाज जारी। मुलाज़िमन जो चवणु आहे त आफ़ीसर हर महीने पघारूं खणी रहिया आहिनि पर नंढनि मुलाज़िमन सां जुट कई पई वञे। पघारूं ऐं पेंशन अदा करे परेशानी ख़तम कई वञे। नयो देरो में परणियल नारीअ खे कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जो इनकशाब। केटी मुमताज़ थाणे ते सरकार जे मुद्दत में केस दाख़िल। हिकु जवाबदार गिरफ़्तार। केस में मुकफ ॼाणायो वियो त घर अंदरि इतफ़ाक़ी गोली लॻण सबबि नाईद खातूअ जे मौत जो वाकियो साम्हूं आयो। पुलिस मूजिबि मुख्य जवाबदार राजा खखराणी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM 88
2: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इसको सीखी, जो मेरा मौका फेरे दिन था, जो इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा. अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ. इसमें पाकिस्तान की भी लड़ाई है, इसमें हम सब की भी लड़ाई है.
4: गवर्नर राज जी धमकिन का डिजण वारो नया कुर्सी खातिर पंजे नजरिए ता हथ न खड़ंदस. खैबर पख्तूनख्वा जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी चयो आहे ता अवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नथो वञी सघे. मूंखे को भी फिक्र ना है, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे. पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो ता लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत के वक्त दिनो. पंजन फैसलन ते नजरसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ गालिन ते अमल कयो वेंदो. पीटीआई के पाकिस्तान की चूंड करनी पवंदी. अरबे बुधाए वे तो पैसा काडे व्या आहिन. मुल्कती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो के बुधाए तो संदन अफगान बाबत रवियो नरम छो आहे. सरहद पार थींदड़ हमलन में 70% अफगान.
5: अपील था क्यों फिल फोर जो अची चाल के आदात को वे
6: अज अस धमकी मिली रो अज अस अगवा पे वे
7: असाई मुआशरे जो आवाज आए मजरूर जैसे उन दाद फरियाद ना किथे जो सदारत ना
8: कानून
9: हक सच लिखा साथी उनो सच न वो इन साथी बेबाक साहब अगवा किया
10: बेबाक साहब की आजिम शाह फुल फोर आजाद सिंध पुलिस किथे निंड में छुटो पे फोसा चौड़ो तो पे अगवा की सख्त मजम्मत
4: KTN News कानपुर महल के रिपोर्टर असीम सियाल जी अगवा के बडी हथी वया. पुलिस मुगवी सहाफिया के बाजाब करने में मुकम्मल तौर से नाकाम बनल. पुलिस की कार्रवाई बे गाल ताई महदूद. अजीम सियाल जी बाजियाबी लाए अमली कदम न खयो. अजीम सियाल जी बाजियाबी लाए कलम धड़ी सरापा एहतजाज बनल. मुख्तलिफ धरना नौशर फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चक बख्शापुर ए भान सईदाबाद एहतजाज कयो वयो. जरवार खैरपुर दोदापुर कुम दड़ो ए तलहार में भी कलम धरने एहतजाज. खैर में वकीलन भी एहतजाज करे अजीम सियाल जी बाजियाबी जो मुतालबो कयो.

0: एटीएन न्यूज का सीनियर रिपोर्टर हुसैन के कच्चे में अगवा हो गया है सर, आप हवाले से
1: मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को ये केस रेफर करेंगे, आप तफसीलात हमें फराहम करें, उसका भरपूर नोटिस है।
2: समावार वफाकी वजीर अता तारण के टीएन न्यूज से अजीम सियाल जी अगवा जो नोटिस वारण है तो सहाफी अजीम सियाल जी अगवा जी मजम्मत क्यों था वाक़े बाबत तफसील दिना वन सहाफी की बाजियाबी लाइ घुर्बल कदम खड़ जरूरी।

अमरीकी सदर ईरान से इन हफ्ते गालियों थियण जो इम्कान जाहिर कर छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है तो उम्मीद है अमरीका तरफा गालियों कंदड़ हलंदड़ हफ्ते ईरान से गालियों कंदा। अमरीका जंग खटी चुको है पर कार्रवाई मुकम्मल तौर से खत्म न थी हैं। मिड टर्म चूंडन का अगे ईरान से हमलो कर सका तो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है। असो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकण है। ईरान खिलाफ फौजी ए मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है। पेट्रोल महंगाई सबब मानुन जो जीवन जंजाल थी वयो। लेवी खत्म करण खां सवाय हुकूमत वट बियो को भी रस्तो नाहे बचियो। जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज नईम चयो आहे त असां पुठते न हटंदासीं। असां चाहियूं था त मसलो पुरअमन तरीके सां हल थी वञे। अवाम बिजली ऐं गैस जी लोडशेडिंग सबब परेशान आहे।

वज़ीर रज़ा केस लाइ जुडिशल कमीशन जे मुद्दे में वाद जो फ़ैसिलो न थी सघियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह समरीअ ते सही करे छॾी। काबीना जी मंज़ूरी रहियल। जुडिशल कमीशन कार्रवाई बाक़ी करे छॾी। घरू खाते जे नुमाइंदे कमीशन खे आगाह कयो त पहिरीं अक्टूबर ते काबीना मंज़ूरी ॾींदी। वकील जिबरान नासिर चयो त सुपर मेडिकल बोर्ड कंहिंजे तसलीअ लाइ ठाहियो पियो वञे। छा डॉक्टर सुमैया समेत सभिनी डॉक्टर स्कूल लिखियो आहे?

0: हैदराबाद में वासा मुलाजमन जो अड़नि महीननि खां पघारू न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कंहिं बि नोटिस न वरितो। हाज़ुर सर्विस तोड़े रिटायर मुलाज़मन 87 ई ॾींहं बि एहतजाज कयो। मुलाज़मन हो त ऑफिसर हर महीने पघारूं खणी रहिया आहिनि, पर नंढनि मुलाज़मनि सां जुठ कई पई वञे। पघारूं ऐं पेंशन अदा करे परेशानी ख़तम नौदेरो में खे कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जो इंकिशाफ़। केटी मुमताज़ थाणे ते मदद में केस दाख़िल, हिकु जवाबदार। केस में मौक़िफ़ ॼाणायो वियो त घर अंदरि गोली लॻण सबबि नाहिद खातून जी मौत जो वाकियो साम्हूं आयो। पुलिस मूजिबि मुख्य जवाबदार राजा खखराणी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

GFM सकरंड, GFM मेहरापुर, GFM मोरो, GFM लाड़कानो, GFM सखर जो आवाज हाजुर है अवां जो पेंजो शो सिंधड़ी जी शाम सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम कंदे हाजुर अवां जो आरजे अवां जो पेंजो यूनुस बकारी अवां जे सुख ऐं सलामतीअ जूं खोड़ सारियूं दुआऊं खणी अवां जे ख़िदमत में हाज़िर जी मोज़ सामईन यकीनन अवां हूंदव ठीक ठाक ऐं हशाश बशाश असांजी दुआ आहे त तव्हां हमेशा ख़ुशबाश हुजो ऐं शाल ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो साईं मुंहिंजा मौसम मटिजी रही आहे ऐं जॾहिं मौसम मटिबी आहे त यकीन पंहिंजा निशान छॾे वेंदी आहे सख़्तु गर्मियूं ऐं वरी ॾींहं जो सख़्तु गर्मियुनि खां पोइ राति जो माक माक ऐं थधी हवा कां निसरी चुकी आहे सर निसरण जे वेझो आहिनि ऐं बबरनि जूं फुलड़ियूं वण टिण सावा सरसब्ज़ आहिनि हर तरफ़

वेलकम बैक मजे समयीन ही आहे GFM88 रेडियो नेटवर्क अवां शो बुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ऐं आरजे अवां पंहिंजो यूनुस बकारी अवां सां मुखातिब आहे। जेकॾहिं शो में शामिल थियण चाहियो था जल्दी सां लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो 888 यानी 8881 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो अवांजा मैसेज ज़रूर शामिल कंदासीं। ऐं हा GFM88 खे ध्यान सां गौर सां प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां ॿुधण लाइ अवां जी महिरबानी।

मोहम्मद अजीज जरवार मोहम्मद इदरीस जरवार याद कर अवज तमाम घड़ी मेहरबानी अवान के चवंदा वेलकम भलीकार खुश हो आबाद हो तारन में चंड खीर में कंध हो तमाम घड़ी मेहरबानी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हिन सदीअ जो वॾो सच आहे। दात वॾी शइ न आहे, पर सच वॾी शइ आहे।

जी जनाब, कीअं पियो लॻे शो अॼु को सिंधड़ी जी शाम? यकीन उन खां पहिरीं जो असां न्यूज़ ब्रेक लाइ हलूं, असां हलंदासीं हिकड़े ट्रैक जे थ्रू ऐं ज़बरदस्त आवाज़ ॿुधाईंदा तव्हांखे वठी हलंदासीं ख़बरुनि जे लाइ। सो त पोइ ॾिसूं था पहिरीं ट्रैक ॾांहुं वधूं।

ठीक टिनि मिंटनि खां पोइ ख़बरूं हूंदियूं ऐं ख़बरुनि खां पोइ कमर्शियल ब्रेक ऐं बिना ब्रेक वापसि ईंदासीं असां 6 वॻे खां पोइ पोइ लाइव कॉल जे लाइ नंबर ॾींदासीं हुन नंबर ते कजो कॉल ऐं जूं कॉल्स शामिल कंदासीं 6 वॻे खां पोइ वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा मसाला फूल का है फूल का।

जी जनाब रांझन शक्कर से सुन रहे हैं, कहते हैं आर ओ रांझन शक्कर प्लीज प्लीज सरबंत सिंधी बिल्कुल सरबंत सिंधी साहब सदा के बुधी सी न्यूज ब्रेक खां पोइ त पोइ मां जे साम्हूं ट्रैक वठी वठूं ब्रेक वठी वठूं बाक़ी ॻाल्हियूं बिना ब्रेक जे कंदासीं छो त प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो यूनिस बकारी।

0: अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूं। अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी टीम शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा। मैं आज इसको इस केपीके से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूं कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे। जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आपने पहले से वही नौमाई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा।
1: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगंदो या वडो वजीर तब्दील थींदो, वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ ऑप्शंस ते गौर वीचार। कानून वारे वफाकी वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तार चयो आहे त एमरजेंसी बाबति आइन बिल्कुल वाज़े आहे, हालतूं अहिड़ियूं हुजनि ऐं आइन जी घुर्ज हुजे त एमरजेंसी लॻण घुर्जे। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो में गवर्नर राज जो घुर्जूं पूरियूं आहिनि। केपी जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी सुठो माण्हू आहे। खैबर पख्तूनख्वा में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो, गवर्नर राज हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी न हलंदो।

0: देखकर बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस खुशी की। जो मेरा मौका फेरी दूर था, जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है, इसमें हम सब की भलाई है।
1: गवर्नर राज जी धमकियन का डिजण वारो ना आया कुर्सी के खातिर पंजी नजरिए ता हथ न खड़ंदस। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी चयो है अवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नथो वनी सके, मुखे को भी फिक्र ना है, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत के वक्त दिनो है, पंजन फैसलन ते नजरसानी कन, हुकूमत से तय थींदड़ गालन ते अमल कयो वेंदो।
2: पाकिस्तान के साथ आपको अब यह फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज क्लियर एज दैट।
1: पीटीआई के पाकिस्तान ए अफगानिस्तान में कहीं एक की चूंड करनी पवी। सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वो है। सतसमा व वफाकी वजीर अता ताड़ चयो तो सूबे अंदर तबाही थी चुकी है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अरबे रुपया डिना, बुधा वे तो पैसा काडे वन। ममलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो केपी हुकूमत बुधाए तो संदन अफगानिस्तान बाबत रवियो नरम छो है। सरहद पार में 70% अफगानी शहरी मुलविस।
3: हक सच लिखण वाला सहाफी उनो सच न वणो इन
1: केटीएन न्यूज खानपुर महल के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा के बढ़िया थी वया। पुलिस मुगवी सहाफिया के बाजियाब करण में नाकाम। पुलिस की कार्रवाई बे गाल महदूद। अजीम सियाल की बाजियाबी लाए अमली कदम न खो। अजीम सियाल की बाजियाबी लाए कलमदानी सरापा एहतजाज बणियल। मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा धरना। घोटकी नौशरो फिरोज गंबटो बावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चक बान सईदाबाद में एहतजाज कियो। जरवाल खैरपुर दोदापुर कुमदड़ो ए तलार में भी कलमदड़न एहतजाज रिकॉर्ड करायो। सखर में वकीलन भी एहतजाज कर अजीम सियाल की बाजियाबी जो मुतालबो कयो। कलमदड़न पारा अजीम सियाल की बाजियाबी जो मुतालबो।
2: न्यूज का सीनियर रिपोर्टर हसन के कच्चे में अगवा हो गया है। सर आपने उस हवाले से
4: मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को यह केस रेफर करेंगे, आप तफसीलात हमें फराहम करें, उसका भरपूर नोटिस है।
1: सुदसमा व रिफाकी वजीर अताताड़ केटीएन न्यूज के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा जो नोटिस वरतो। अताताड़ चयो है तो सहाफी अजीम सियाल की अगवा की मजम्मत क्यों था, वाक़े बाबत तफसील लिना वन। सहाफिया की बाजियाबी लाइ घुर्बल कदम खड़ जरूरी है।

दुश्मन फौज के जल्द अरबी समुंड मां नेकाली डिनी वेंदी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई की समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में फौज दुश्मन के ईरानी समुंड मां नेकाली डिनी है। हाने अरबी समुंड मां दुश्मन की नेकाली लाए ईरानी फौज जल्द वड़ी कार्रवाई कंदी। अमरीकी सदर ईरान से इन हफ्ते गाल जो इम्कान जाहिर कर ट्रंप जो चवण है उम्मीद है अमरीका तरफा गाल हलंदड़ हफ्ते ईरान से गाल अमरीका जंग खटे चुको है पर कार्रवाई मुकम्मल तौर खत्म न थी। मिडटर्म चूंड अगे ईरान से हमलो कर तो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है। असो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकण है। ईरान खिलाफ फौजी ए मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है। कच्छे के मुख्तलिफ शहर में एस टी पी की सिंध मोजी अमां के सिरे हेठ रैलियों डॉक्टर कादिर मक्सी ए बेन की शिरकत। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी है तो सिंध की जाग्राफियाई हदन से हथ चुरान बर्दाश्त न कंदी मुल्क से हाने नवा तजर्बा बंद थियण घुर्जन। मीर रजा केस लाए जुडिशल कमीशन के मुद्दे में वाद जो फैसलो न थी सको वडे वजीर मुराद अली शाह समरी से सही कर छी काबीना की मंजूरी रहल। जुडिशल कमीशन कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर छी। घरू खाते के नुमाइंदे कमीशन के आगाह किया तो पहली अक्टूबर से काबीना मंजूर। वकील जिब्रान नासिर चयो तो सुपर मेडिकल बोर्ड कें तसली लाए ठाया पे वे डॉक्टर सुमैया समेत सभी डॉक्टर्स कूड़ लिखो है।

मोरू में पुलिस पारा औरतन के अगवा कंदड़ गिरोह के गिरफ्तार करण बिन औरतन के बाजियाब करण की दावा पुलिस मौजिब दरगाह औरतन के वर्गलाए अगवाबाद विक्रो कंदड़ गिरोह के गिरफ्तार कयो आहे। कार्रवाई दौरान मंजूर पांवर उर्स पांवर जायदा सईदा मर्दा ए सीमा के गिरफ्तार कयो वियो आहे। बिन औरतन के बाजियाब करायो आहे। नईदेरे में पढ़ियल नारी के कारा इल्ज़ाम हेठ कतल करण जो इंकशाफ केटी मुमताज थाने ते सरकार की मदद में केस दाखिल एक जवाबदार गिरफ्तार। केस में मौकिफ जानायो वियो तो घर अंदर इतफाकी गोली लगन सबब नाहिद खातून की मौत जो वाक्य सामू आयो। पुलिस मूजिब मुख्य जवाबदार राजा खकरानी के गिरफ्तार किया है।

पाल में बरसातुनि बाद आयल बोड़ तबाही मचाए छॾी। केतिरा ई माण्हू फौत, केतिरा ई गुम। बोड़ जे वेकरनि में गाॾियूं ऐं घर बि लुड़ी विया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग सबब पूरो जबली मिटीअ जी ढेर में तब्दील। केतिरा ई घर दफ़न। दरियाह जो लंघ बि बंदि थी वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GAFM 88
1: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पंजवीह 786 जी हाँ बुड़ी टे टे चार टे पंज ब पंज सत अठ छ यो असो नंबर है। इन नंबर से तुम कॉल कयो आई तवा सा गाल बोल थींदी कॉल थींदी तो पोए अटेंड करे वठनासी अवां जी कॉल के दिसनासी त पहरी कॉल केड़े मेहरबान जी सदाई पहुंचे थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आवाज अच्छी पियो साईं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।

0: ఎస్ఎస్సీ కాల్ తెరే. హలో, అస్సలాము అలైకుమ్.
1: హలో, అస్సలాము అలైకుమ్ సార్.
0: వాలేకుమ్ అస్సలాం. కేర్ సాహబ్ కితా కా
1: సచీపుర్ అదనాన్ చాండియో.
0: జీ అదనాన్ చాండియో సాహబ్, చాల ఠీక్ ఆయో.
1: సహీ ఆ తబియత.
0: హా, తమా సా గడి కేర్ పి బుధి
1: మోసా గడ ముజో భా కమర్ దిన చాండియో, బదర్ దిన చాండియో, దక్సర్ చాండియో, ఫ్యాజ్ చాండియో.
0: జీ జీ
1: मांजा दोस्तन गुलकार चांडियो, अलादार चांडियो, असद चांडियो.
0: मेहरबानी, लख थोरा साईं, लख थोरा. जी जनाब, साज़ आवाज़ साथ में असा के कॉल आई चांडियो साहब जी. आए हाने दिसना सी दसन दा गरी केर हुंदो उने जेला कॉल अटेंड के हुं था. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: केर साहब है किथा का यार?
2: मानो कनल से नमाज गले गोटकी कामटा मानो.
0: पुनल हुसैन मेहर साहब, खुश आयो? ठीक आयो? चंगा भला मतारा जोड़. अल्लाह साईं जा एहसान आहिनि. तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे. घोटकी जी मौसम कीअं?
2: मौसम तमामु प्यारी आहे, तमामु प्यारी. तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे
0: पहिरीं. महिरबानी, महिरबानी. लख थोरा, लख थोरा साईं. अच्छा,
2: प्यारा कलाम हलाईंदा हुआ जबरदस्त. कलाम ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि तव्हांजा, जेका बि हलायो.
0: अच्छा, कोशिश कंदा आहियूं त कुझु पुराणा गाना बि हलायूं ताकि असांजे ॿुधंदड़ ख़ुशि थियनि.
2: जी ज़रूरत बि न हूंदी आहे, एॾा मिठा कलाम था पहिरीं.
0: हा, अच्छा, अव्हां सां गॾु पुनल, पुनल प्यारा, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: मुंहिंजे ॿाहिरि ॿुधनि था. फौजी शबीर मार, फौजी नबील मार, शाहिद मार, समन मार, दिलावर मार, वकार अली मार, दिलावर मार.
0: तमामु घणियूं अव्हां जूं महिरबानियूं, मोहबतूं. तव्हां सभिनी खे वेलकम था चऊं.
2: वॾी महिरबानी, लख त अलाह पाद आबाद करे तव्हांखे.
0: आमीन, आमीन. ख़ुशि हुजो. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू. लख थोरा, वॾी महिरबानी. पुनल हुसैन मेहर साहब घोटकी खां असांखे जॉइन कयो. थैंक यू. ॾिसंदासीं कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: जी वालेकुम सलाम.
0: जी केर साहब ऐं किथां खां?
3: जेकमाबाद खां ॻाल्हायां थो, रहमत अली जकराणी.
0: छा हाल आहे रहमत अली जकराणी साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
3: बिल्कुलु, असां ख़ुशि आहियूं. तव्हां ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ आहे. तव्हां ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
3: बिल्कुलु, मालिक जो शुक्र आहे साईं.
0: अलाह करे आबाद हुजो सदाई, तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो. अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे साईं?
3: रस्तम पवार, नाज नंगर जमाली, पठान पटकी वारो, मुनीर सियाल.
0: तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हांजे दोस्तनि जूं.
3: महिरबानी.
0: लख थोरा, लख थोरा. जी जनाब, कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: साईं, वालेकुम अस्सलाम.
0: साईं केर साहब ऐं किथां खां?
4: साईं हुसैन बख़्श सियाल, नवाबी संगत खां.
0: छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो सियाल साहब?
4: अलहमदुल्ला साईं, बिल्कुलु आउं ख़ुशि आहियां. अव्हां कीअं आहियो साईं? ख़ुशि आहियो, तबियत सही आहे.
0: अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे. बिल्कुलु ठीकु ठाक ऐं ख़ुशबाश आहियां.
4: माशाल्लाह साईं, तव्हांखे साईं अञा बहितर सिहत ॾींदो. ऐं अॼु मां ईअं सम्झो घणनि ॾींहं खां पोइ फर्स्ट टाइम वरी अव्हां जो प्रोग्राम मूं एफ एम 94 तां ॿुधो. ऐं ॾाढी दिलि ख़ुशि थी तव्हां जी का वापसी थई वरी. मुंहिंजे लाइ त अॼु पहिरियों ॾींहुं आहे, पोइ तव्हां लाइ कॾहिं खां शुरू थिया वरी प्रोग्राम लाइ, पर मूंखे ॾाढी अॼु ख़ुशी थी
0: साईं. मूंखे बि तमामु घणी ख़ुशी थी. ऐं तव्हां असांखे मेहरापुर जे नगरीअ मां ॿुधो पिया. सदाई सुखिया हुजो. थैंक यू. ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो. ऐं बिल्कुलु बिल्कुलु, काफ़ी वक़्तु थियो आहे, शो वरी शुरू थी वियो आहे. हर सूमर ऐं अंगारे ते शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं गॾु हूंदा आहियूं.
4: इनशाला सर, ऐं अॼु असांखे असां जीअं रेडियो ट्यून कयो त अव्हांजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधोसीं त डीप छो त बेहद ख़ुशी थई त असांजो भाउ, असांजो दोस्त यूनिस साहब वरी वापसि आया आहिनि ऐं असां लाइ प्रोग्राम कनि पिया. ॾाढी ख़ुशी पई. असां वरी बि अव्हांखे दिलि जे गहरनि सां मोस्ट वेलकम चऊं था त उमेदु रखूं था सदाई अव्हां असां लाइ प्रोग्राम कंदा रहंदा.
0: महिरबानी साईं, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा. लख थोरा दोस्तनि जा नाला खणणु चाहियो था?
4: साईं बसि आऊं जम्मू में पंहिंजी नवाज़ संगत वारनि खे सलाम ॾियां थो ऐं मुंहिंजी प्यारी बि संगत आहे गुला जी संगत वारनि खे सलाम, अव्हांखे, अव्हांजी पूरी टीम खे सलाम.
0: ऐं
4: अव्हांखे वरी मां दुआ ॾियां थो त अलाह साईं अव्हांखे हमेशह ख़ुशि आबाद रखे ऐं सितारनि में चंड हुजो जीअं चयो, खीर में खंड हुजो ईअं
0: हुजो। साईं महिरबानी, जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। यकीन साज ऐं आवाज़ साथ में प्यार ऐं पंहिंजाइप जा रंग शामिल ऐं रंगनि में अवां शामिल। अवीं सभु असांजा ॿुधंदड़ असांजी कुल काइनात आहियो। ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पवर साहब, खुश आयो, ठीक आयो, चङा भला, मतारा जोड़। अल्लाह पाक जा अनेक एहसान दुआऊं आहिनि। अवां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे रुस्तम? आमीन आमीन आमीन, महिरबानी साईं। अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
5: असांजा दोस्त आहिनि ॿुधनि पिया, रहमत अली जखराणी, नाज नंगर खान, जमाली, दिलीप कुमार, मेंगवार, चोहन कुमार, कोली,
0: जी जी,
5: दोस्त ॿुधनि पिया, सभिनी खे असांजे तरफ़ां सलाम।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू, महिरबानी। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में वरी बि ॾिसंदासीं त कॉल ते अगरि केरु आहे, ऐं बल्कि कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: जी सर, वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां? प्यार अली लुंड साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला, मतारा जोड़।
6: सभु ख़ैर अलहमदिल्ला, मालिक जे कर्म आहिनि। सर, मां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो, ख़ैरियत सां आहियो?
0: अलहमदिल्ला, अव्हांजी दुआ लॻी पए। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे प्यार अली?
6: जी सर, सलाम ॾियणु चाहींदासीं दोस्तनि खे, दिलीप कुमार मेघवाल, मलिक मोहम्मद बलोच, रुस्तम पावर ऐं रामचंद कुमार मकवाण।
0: तमामु घणियूं महिरबानी साईं, लख थोरा। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में हिकड़ी वधीक कॉल अटेंड कंदासीं, ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। सबानाज, ठीकु आहियो, चङा भला आहियो? शुक्र अलहमदिल्ला, तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे। तव्हांखे शो कीअं थो लॻे? तव्हां मुंहिंजा फैन आहियो, मां तव्हांजो थोराइतो आहियां। अलाह साईं ख़ुशि रखे तव्हांखे, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। प्रोग्राम जे हवाले सां ॿियो कुझु चवणु चाहींदा?
7: तव्हांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त हले, बाक़ी तबसुम लाइ नियापो त
0: तबसुम खे मिस था कयो। जेकॾहिं तबसुम ई शो ॿुधंदी हूंदी त ज़रूरु तव्हांजे हवाले सां कॉल कंदी, शो में शामिल थींदी ऐं ॿुधाईंदी त शो में कॾहिं ईंदी। थैंक यू।

0: 88 रेडियो नेटवर्क सिंधड़ी जी शाम आई अवां जे नाम ॾिसंदासीं त असां सां गॾु हाणे कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, हिन साईं छा हाल आहे, कुझु आयो ख़ैर?
0: अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई। केरु साहब ऐं किथां खां?
1: सर, कुंडली खां चोवन कुमार गोली अटो ॻाल्हायां। सर,
0: छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो चोवन? अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे। ए वन लॻा पिया आहियूं। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
1: दोस्त हीअं वेठो हूंदो आहे कासम, त तकरीबन पासे में वेठो हूंदो कासम त चवाणी आहे। दोस्त असांजो तव्हांखे रुस्तम पवर बि ॿुधे पियो, ऐं गुलाब गुल भील ऐं हरेश खेताणी सां गॾु ॿुधंदो आहे। चेलार में सभिनी खे सलाम सर।
0: वालेकुम असलाम। कहिड़े कुर्ब मिठा माण्हू, कहिड़े कुर्ब तव्हांजा?
1: थैंक यू।
0: चोवन कुमार कोहली जी कॉल, ऐं ॾिसंदासीं हुन खां पोइ असां अगरि केरु

0: जी जनाब कॉल ते असा सा जुड़ी चुका है केर दिसनासी कॉल ते केर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं शाला रोरी सकर खा तो पुराना लिसनर नजीर अहमद मंगरे।
0: साईं नजीर अहमद मंगरे साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला
1: अल्लाह जाए सानन ता भानी दुआयों ता बुधायो की हो खुश रहा पयो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह वा जी दुआ लगी पई ता खुश आयो आबाद आयो
1: माशाल्लाह जबरदस्त ता जो प्रोग्राम अल्लाह जाए सानन उतर जे थदे दे नावा उन में ता प्रोग्राम बदौदा
0: साईं भला भाग असा जा वा जड़ा महबूब दोस्त असा के बुधन बियो छा घुरजे
1: मिठड़ो आवाज है अंदाज ता जो लुत्फ दे रहयो हकीकत में
0: केरोडे कुर्ब मिठा मानो केरोडे कुर्ब अवा सके बियो केर केर बुधे पियो
1: काफी दोस्तन पर थी सके ता थोड़ो आस्ते पो भी सुमिर जब कलाम बुधराइंदा
0: जरूर बुधराइंदासी के कोन बुधराइंदासी असा के इते हलनो आ अवा सा गद जिंदा रहनो आ तो बुधंदा बुधराइंदासी
1: अल्लाह खुश रखिंदो न पर बिजरानी ता प्रोग्राम बुधी रहा सके अंदर अली शबानिया
0: जी जी
1: मोहम्मद सुलेमान शेख और अब्दुल महमीद शेख ता प्रोग्राम बुधे तो
0: जी जी
1: या काफी जगह भी दोस्तन का चोन को मार को ये सलाम अली भाई
0: वालेकुम अस्सलाम किरोड़े कुर्ब मिठावाणो किरोड़े कुर्ब थैंक यू मेहरबानी। ओके जनाब साज आवाज साथ में असा साणा जो साथ एक वधी कॉल अटेंड कंदासी देसनासी ते कहन जी आए कॉल जी जनाब हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भा केड़ो हाले
0: भा दुआए भा तमा केर पे गलायो
2: जी गोट बाबू और सरपार कर का गलाय पे दिलीप कुमार मेघवाड़
0: छा हाला दिलीप कुमार भा
2: दीदी अला जो तो करे हाल कुछ बेहतर आए न
0: हाँ कुछ बेहतर है न अच्छा आई अवां सा गरीब केर भी बुदे
2: जदी ता सा गाल कयो दा न गलाए दा तरी हाण लफ्ज कट जी वने तो बिल्कुल बेहतर थी
0: वने अन न तो पई मा ता के रोज कॉल करे जे कदे मुझे कॉल ते ता बेहतर थी सको दा तो मा सजो दी ता के कॉल करण ला तैयार है।
2: दीदी ध्यान जी अल्लाह तवा के कुछ रखे मसा कर कुछ दोस्त बदल के उनके चावल कंदा से
0: सही सही भले नाला वठो नंजा
2: प्यार लीलुंड रोस्तम पवार रामचंद मकान मलक मोहम्मद बलोच मोहम्मद साले लगारी अज थोड़ा नालो वठोला छो तो बेन के वारो दियो सबनी के सलाह
0: डाडो सुठो कम हाने ता शुरू कयो यो सही है पेरी इतरा नाला वठदायो चंगो खासो आरजे इतरा नाला न वठे जितरा एकडो लिसनर नाला वठी वने तो बाबा सॼी सिंध जेका आहे न उहो पंहिंजा दोस्त आहिनि भाउ आहिनि भेण आहिनि पर हाणे जंहिंजो नालो तव्हां न वठंदा उहो नाराज़ थी वियो हिन खां बहितर थोरा हिकिड़ो ॿ नाला वठो पंहिंजे घर भातियुनि जा पंहिंजा जेके आहिनि छोकिरा हुननि जा ताकी ॿियनि खे चइजे त यार वरी ॿिया था कावड़
2: कनि।
0: थैंक यू भलीकार चवंदासीं तव्हांखे साईं मुंहिंजा चोरी चोरी कोई कंहिंसां नेण मिलाए वेठो आहे। कॉल अटेंड कंदासीं ॾिसंदासीं केरु आहे असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम साईं कीतर जबल खां बदरुद्दीन चांडिया।
0: बदरुद्दीन चांडिया साहब खुश आयो ठीक आयो मानी पिया खाओ संजय मां
3: जी जी साईं कुझु मुंहिंजा दोस्त
0: जी जी
3: प्रेम चांडियो
0: जी जी
3: बाबर चांडियो
0: जी जी
3: दुल्फार चांडियो
0: जी
3: असद चांडियो
0: महिरबानी साईं महिरबानी

0: जी जनाब इकरार वही दरी आवाज़ सां गॾु कॉलूं बि अचनि पियूं, ॾिसूं था कंहिंजी कॉल आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर साहब ऐं किथां खां? जी छा हाल आहे चांडियो साहब, ख़ुशि आहियो?
1: शुक्र
0: जी जी अलहमदुल्ला। तव्हां सां गॾु बि केर पियो ॿुधे?
1: मुंहिंजा माण्हू मूं सां गॾु साजिद हुसैन चांडियो ऐं नज़र हुसैन चांडियो ऐं मुंहिंजा ॿाहिरि नालादा चांडियो ऐं मौलादा चांडियो, मुंहिंजो प्यारो दोस्त ज़ुल्फ़कार चांडियो। साईं
0: साईं सभिनी जूं महिरबानियूं, लख थोरा मिठा माण्हू। ओके कुर्ब तव्हांजा। आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफ एम सखर, जी एफ एम लाड़काणू, जी एफ एम मीरपुर खास, जी एफ एम मोरो, जी एफ एम मेहरापुर, जी एफ एम मटियारी, जी एफ एम सकरंड ऐं जी एफ एम मातली जो गॾियल आवाज़। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: साईं केर साहब ऐं किथां खां? जी ज़ुल्फ़कार, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? महिरबानी मिठा माण्हू, महिरबानी लख थोरा तव्हांजा, ख़ुशि हुजो। ओके जनाब, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। साईं छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुल्ला। केरु साहब ऐं किथां खां?
1: साईं हर जे नाल

0: फकीर मोहम्मद जलालाणी ॻोठ गुलाम हुसैन जलालाणी लग जोल।
1: महिरबानी मिठा माण्हू, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
0: हा साईं, काफ़ी दोस्त मूंसां गॾु आहिनि हिन वक़्तु। असांजो चारो दोस्त रुस्तम अली पावर, रोशन अली पावर, गुलाम रहीम बलोच, कुर्बान ख़ासि कली, चोवन कुमार कोहली।

0: अगर कुछ मुझे फैमिली का मैं बराहन जानी आरजू असलम जलालानी सुजात हुसैन जलालानी अख्तियार हुसैन जलालानी मुख्तार नाज महबूब नाज आए मसा गड
1: मिठा मानू थैंक यू खुश हुजो शॉर्ट ब्रेक है कमर्शियल ब्रेक है दौरान कॉल न कजो कॉल कजो ठीक बजन मिंटन का पोए प्रोग्राम है जारी और सारी नंढड़े ब्रेक का वापस इंदो यूनुस बकारी के रहना वंचा।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म। आई डी कुदरती असली ग्लो डी

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ मिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88
3: नेटवर्क सिंध की आवाज़.

की हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: ਆਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਖੈਰਾ ਤਵਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਰੇ ਟੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਈ
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਆ ਲਗੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਖਾਨ ਪਟਕੇ ਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਵਾਂ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋ ਦੁਆਉਂ ਹਨ ਅਵਾਂ ਸਾ ਕਦੀ ਬਿਓ ਕੇਰ ਪਿਓ ਬੁਦੇ
0: ਹਾਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਂ ਸਾ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਜਖਾਨੀਆ ਰਾਮਤ ਸਿੰਘ ਜਖਾਨੀਆ ਬੱਚੇ ਦੋਸਤ ਰਿਪੋਰਟੋ ਕੋਸੋ ਨਿਕੂ ਅਲਾਵਾ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਾਤਾਨੀਆ
1: ਜੀ
0: ਕੋੜਾ ਖਾਨ ਮਰੀ ਜੇ ਕਤਰੀ ਕਰਬ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋੜ ਸਲਾਮ ਮੁਹਬਤੋਂ
1: तमाम घणी मोहब्बतू तवां जो तवां पहिरियों दफ़ो कॉल कई सच पुछो दिल ॾाढी ख़ुशि थी
0: जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मां कॉल कंदो रहां थो अलाह ख़ैर कंदो सर
1: कुर्ब साईं कुर्ब साईं ख़ुशि हुजो जी जनाब पठान खान पटके वारे साहब जी कॉल लॻी वई ऐं वाह वाह थी वई ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते कहिड़ो असां वटि बाक़ी आहिनि नव मिंट लॻी एकवंजाह मिंट थिया आहिनि नवनि मिंटनि जो बाक़ी साथ साज़ ऐं आवाज़ जो साथ यूनिस बकारी जे वञण जो साथ ओके जनाब कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम अदा
1: केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे कुर्बान अली ख़ासकेली साहब ख़ुशि आयो ठीकु कयो चङा भला मतारा जोड़ ॿार बच्चा टंगड़े में हा अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे वालेकुम असलाम भला देरि सां कॉल छो लॻी आहे तव्हांजी किथे गैर हाज़िर हुआ केॾा घुमण विया बहरहाल सॉरी था चऊं जेकर अहिड़ी ॻाल्हि थी वई त ओहो चलो चलो मां ॾिसां थो कोशिशि कयां थो त असांजी नशरियात तव्हां ताईं पहुचे नशरियात कावड़ न कर जल्दी जल्दी कुर्बान ख़ासकेली वटि पहुच ठीकु आहे नशरियात खे चई छॾियो आहे कुर्बान ख़ासकेली साहब हिन गाने में तव्हांखे कुझु चइजे थो ॿुधो वरी ॿुधो हाणे ॿुधो भला

0: जी तू थोरो ख्याल कंदो कर न कैसा गाल कंदो कर कॉल ते दिसुंदा के रहलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब है किथा खा
1: मैं अली कलोरो

रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, कॉल ते आवाज़ दें पियो ची, इन जे करे कॉल ड्रॉप करनी पेजी वही मजबूरन।

0: रेडियो नेटवर्क अहां बुधो पिया मातली मिरप्रखास मटियारी सकरंड मेहरापुर मोरो लड़काणू आई सखर GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो नारो है सिंध जो आवाज कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा खां
1: जकबाबाद का शौकत अली जखरानी हलाए तो
0: शौकत अली जखरानी साहब खुश आयो ठीक आयो
1: खैर लगो तो खुश आयो
0: अल्हम्दुलिल्लाह तवां सा कदी भी केर पे बुदे
1: रुस्तम पावर आए फकीर मोहम्मद जलालानी नंगर जमाली
0: जी जी
1: नज़ीर अहमद मंगरो जेके दोस्तों सबन के सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम तमाम घणी मेहरबानी लख थोरा जी थैंक यू ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: हलो
0: अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम छा हाल आहे सर
0: शुक्र आहे केरु साहब ऐं किथां खां
2: पासे गुलाम रशीद चांडियो मंसूर चांडियो थो ॻाल्हायां
0: जी छा हाल आहे चांडिया साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: सर त चांडियो आहे मुंहिंजो भाउ
0: जी जी
2: मुंहिंजो भाउ असर ख़ान चांडियो मंजीत चांडियो
0: महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू थैंक यू थैंक यू वेरी मच लख थोरा टाइम घटि आहे मौज़ूस ख़वातीन हज़रात थोरो थोरो टाइम वठी कॉल करे सघो था 0334352578 असांजो नंबर ऐं हुन नंबर ते ॾिसंदासीं केरु हूंदो असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: हलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम केरु साहब ऐं किथां खां जी जी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी थैंक यू मिठा माण्हू महिरबानी ओके लाफ़ेज़ जी जनाब साथ आवाज़ साथ में आख़िरी लम्हा छो जा ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: केरु साहब ऐं किथां खां
4: अमीर चाणी थो ॻाल्हायां कीकर जे वाला भाउ
0: जी छा हाल आहे ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
4: अलहमदुल्ला साईं तव्हां सां ख़ुशि आहियो ख़ैरु आहे
0: अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
4: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु इम्तियाज़ चांडियो इमरान चांडियो अदनान चांडियो ज़ुल्फ़िकार चांडियो ऐं बदर चांडियो
0: महिरबानी महिरबानी लख तौरु

0: It's 7 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: कोलन एफ जैक्सन जी की आदत में वफद GHQ को तो ISPR पहुंचे मुलाकात में गडियल दिलचस्पी पाकिस्तान की हिमायत इलाकाई सिक्योरिटी अफगानिस्तान की सूरत हाल ए कमीशन के कम बाबत मामलन ते गालियों कई हुई फील्ड मार्शल अफगानिस्तान तकरार सिक्योरिटी सूरत हाल ए उन जे असरन ते मौकिफ पेश कंदे पाकिस्तान के दरपेश चैलेंजेस का आगाह कयो अमरीकी वफद अफगान तकरार दौरान पाकिस्तान के किरदार ए कुर्बानन जो इतराफ कंदे इलाकाई अमुन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की सराह कई
5: अफरीदी नहीं चलेगा ये मैं आपको कहता हूँ अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा उसकी टीम शिप भी नहीं चलेगी इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा मैं आज इसको इस केपीके से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूँ कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे जेल के अंदर होंगे वही सलाखों के अंदर होंगे जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा जो आपने पहले से वही नौमाई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा।
4: खैबर पख्तूनख्वा में वो वजीर तब्दील थो या इमरजेंसी लगंदी वफाकी हुकूमत की मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल कानून वाले वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड केपीए में इमरजेंसी लगन घुर्जे लगंदी भी आइन में घुर्बल जरूरतू पूरी हूं तब कुछ थी वो इमरजेंसी बाबत आइन वाजे है वफाकी वजीर अमीर मकाम केपीए में गवर्नर राज जो घुर्जू पूरी केपी में कें भी वक्त कुछ भी थी सके तो गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न पर वो वजीर सोहेल आफरीदी न हलंदो

मोरो में पुलिस पारा औरतुन के अगवा कंदड़ गिरोह के गिरफ्तार करण बिन औरतुन के बाजियाब करण जी दावा पुलिस मूजिब दरगाह औरतुन के वर्गिला अगवा बाद विक्रो कंदड़ गिरोह के गिरफ्तार कियो वियो आहे। कार्रवाई दौरान मंजूर पांवर उर्स पांवर जाहिदा सईदा मुरादा और सीमा के गिरफ्तार कियो वियो आहे। बिन औरतुन के बाजियाब भी करायो वियो। मीरपुर मातिलो में 25 दिन अग कतल थियल नौजवान के वारसन जो एहतजाज गोठ सूमर मोरी में कतल थियल मौज अली लुंड के वारसन एसएसपी ऑफिस आलो एहतजाज कयो। वारसन चयो त पुलिस जवाबदार खालिक शाह अहमद नवाज लुंड मंठार चाकर रबन लुंड बेन के गिरफ्तार नाहे कयो। एसएसपी ए डीआईजी नोटिस वठन।

गाज़ी अमन जे गोठ शकल खान चांद जे रावासन जो गोठाणे जे कतल खिलाफ़ एहतजाज। गोठाणनि चयो त कुझु ॾींहं अॻु पाणी जे वारे तां 25 वरनि जे अब्दुल्ला चांडियो खे क़तल कयो वियो। पुलिस जवाबदार इक़बाल आरही, अहसान मिरासी, अब्दुल गफ़ार मिरासी ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो। आई जी सिंध नोटिस वठे।

0: भारत ऐं नेपाल में बरसातुनि बाद आयल ॿोॾि तबाही मचाए छॾी, दर्जने माण्हू फौत, केतिरा ई गुम। ॿोॾि जे वहिकरनि में गाॾियूं ऐं घर बि लुड़ी विया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में लैंड स्लाइडिंग सबबि पूरो जबल ई मिटीअ जी ढेर में तब्दील। केतिरा ई घर दफ़न, दरियाह जो लंघ बि बंदि थी वियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: थम थम थम, किताबे लेके निकले हम, अमीन कहाना रुक ना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: This program is brought to you by
5: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Aap sun rahe hain
7: GAFM 88
6: network, Sindh ki awaaz.

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, हमारे आम सिविलियंस को इस खून खराबे से बचाओ. इसमें पाकिस्तान की भी लड़ाई है, इसमें हम सब की भी लड़ाई है.
4: गवर्नर राज जी धमकियुनि खां डिॼण वारो न आहियां. कुर्सीअ ख़ातिर पंहिंजी नज़रिए तां कॾहिं बि हथ न खणंदुसि. केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे. मूंखे को बि फिक्र न आहे. रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे. पीटीआई अॻवान सलमान राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो. पंहिंजनि फ़ैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल. पीटीआई के पाकिस्तान अफगानिस्तान मां का हिक जी चूंड करणी पवंदी. सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वियो आहे. सुदसमा वफाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदर तबाही थी चुकी आहे. वफाक केपीअ खे अरबे रुपया ॾिना. ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि. मुमलकती वज़ीर तलाल हुकूमत ॿुधाए त संदन अफगानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे. सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफगानी मुलविस आहिनि. लॉन्ग मार्च बाबति पार्टीअ जी तयारी न हुई. जी तारीख़ तब्दील थियण सां पार्टी कमज़ोर थी आहे. केपी जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर चयो आहे त सूबे में वॾे वज़ीर जी रिट न हुअण सबबि वज़ीर खे खंभियो पियो वञे. बानी जे चवण ते वॾे वज़ारत ते छॾी ॿीहर हुकुम मिलियो त ॿीहर थी सघां थो.
5: अपील था कयूं सिल फोर जेको आहे अची चाल खे आदाद थो वञे.
6: अॼु असांखे धमकी मिली रहियो आहे, अॼु असांखे अगवा कयो पियो वञे.
7: असां बि जेको आहे मुआशिरे जो आवाज़ आहे. मज़लूम कॾहिं हुन जो को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुन जो सदारत न थींदो आहे.
8: कल्चर जेको आहे हिकिड़ो टो भूंगो तलब करनि था. इहो किथां जो कानून आहे. अॻे कतर थींदा, हाणे अगवा करे मुख़्तलिफ़ मुदनि खां अॻियां वञनि था.
9: हक़ सच लिखण वारा साहबी उन्हनि खे पंहिंजो सच न वणियो. इन जे करे असांजे साथ
10: बेपाक साहब जेके अगवा कयो आहे फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में खुटो पियो आहे. फुलफा दौड़ो थो पए. असां हिन अगवा जी सख़्त मज़मत था कयूं.
4: KTN न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे अॻवा खे ॿ ॾींहं थी विया. पुलिस मुगवी साफ़ीअ खे बाज़ियाब कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम बणियल. पुलिस ॻाल्हियुनि ताईं महदूद. अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ अमली क़दम न खयो. अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज. मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा. घोटकी, नौशेरो फिरोज़, गंबट, उॿावड़ो, मीरपुर माथेरो, ठरी मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं भान सईदाबाद में एहतजाज कयो वियो. जरवार, खैरपुर, दोदापुर, कुम, दड़ो ऐं तलार में कलम धड़नि पारां एहतजाज कयो वियो. सखर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो.

0: पीटीएन न्यूज का सीनियर रिपोर्टर हुसैन के कच्चे में अगवा हो गया है सर, आपने उस हवाले से
1: की मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को ये केस रेफर करेंगे, आप तफसीलात हमें फराहम करें, उसका भरपूर नोटिस है।
2: सुसमा वाले फाकी वजीर अतातार केटीएन न्यूज के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा जो नोटिस वरतो अतातार है तो सहाफी अजीम सियाल की अगवा की मजम्मत क्यों था वाक़े बाबत तफसील डिना वन सहाफी की बाजियाबी लाइ घुर्बल कदम खड़ जरूरी है। दुश्मन फौज के जल्द अरबी समुंड में निकाली डी वी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई समाजी वेबसाइट जारी कल बयान में चयो है ईरानी फौज दुश्मन के ईरानी समुंड में निकाली डी है हाने अरबी समुंड में दुश्मन की निकाली लाए ईरानी फौज जल्द वही कार्रवाई कंदी। अमेरिकी सदर ईरान से इन हफ्ते गालियों थे जो इम्कान जाहिर कर छो डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है तो उम्मीद है अमेरिका तरफा गाल हलंदड़ हफ्ते ईरान से गाल अमेरिका जंग खटे चुको है पर कार्रवाई मुकम्मल तौर खत्म न थी मिडटर्म चूंडन का अग ईरान से हमलो कर सो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थे उम्मीद है असो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकण है ईरान खिलाफ फौजी ए मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जो गडियल अरब अमारातन जो गुझो दौरों 7 अक्टूबर 2023 ते हमास के हमले बाबत अगवाट खबर देने वाले खबरों की तरदीद करने की दरख्वास्त परदेही खबरू इदारे मूजिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू गुजरे ढी निजी उड़ान जरिए यूएई जो गुझो दौरों कर नेतन्याहू गडियल अरब अमारातन के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात कर हमास के हमले बाबत अगवाट इतला देने वाले खबरों की तरदीद करने की दरख्वास्त कई आलमी इदारे मूजिब गडियल अरब इमारातन इसराइली वजीर आजम के 2023 में हमास के हमले का अग आगाह कर हो जैके नेतन्याहू नजरअंदाज कर हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी अफगान जंग कमीशन के वफद की मुलाकात शुमायला एन चौधरी ए डॉक्टर कोलन एफ जैक्सन की क्यादत में वफद जीएचक्यू पहुंतो आईएसपीआर मूजिब मुलाकात में गडियल दिलचस्पी पाकिस्तान की हिमायत इलाकई सिक्योरिटी अफगानिस्तान की सूरत हाल ए कमीशन के कम बाबत मामलों के ख्याल की फील्ड मार्शल अफगानिस्तान तकरार सिक्योरिटी सूरत हाल ए उन असर से मौकफ पेश कदे पाकिस्तान के दर मार्शल अफगानिस्तान तकरार सिक्योरिटी सूरत हाल ए उन असर से मौकफ पेश कदे पाकिस्तान के दरपेश चैलेंजेस का आगाह कर अमरीकी वफद अफगान तकरार दौरान पाकिस्तान के किरदार ए कुर्बानन जो इतराफ़ कदे इलाकई अमुन इस्तेहकाम पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर वजीर शर्जील मेमन नासिर शाह खुर्शीद शाह नवीद कमर ए बेन जो मुलाकातों सूबाई वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी के खातन की कारकर्दगी बाबत आगाह कर मुल्की सियासी सूरत हाल से भी ख्याल की देवठ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टोंक में दहशतगर्दन की पुलिस से फायरिंग टे अहलकार शहीद वजीराबाद बाजार में दहशतगर्दन की फायरिंग में ट्रैफिक पुलिस जो एएसआई अजमतुल्ला समेत टे अहलकार शहीद थे घरू वजीर मोहसन नकवी पारा टिन पुलिस अहलकार की शहादत से दुख जो इजहार दहशतगर्दन के खात्मे वाले अजम जो वर्जाओ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दन खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज जो कार्रवाई जारी डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 दहशतगर्द मारजी वया सिक्योरिटी जरिए जो चवण है तो फोर्सेज दहशतगर्दन की चुरपुर से नजर रखे कामयाबी से निशानो बनाया मारजी वेल दहशतगर्दन के कब्जे में हथियार बारूदी मवाद ए करेंसी हथ कई वही है। जे मुख्तलिफ शहरों में एसटीपी जी सिंध मुंजी अमां जी सिरे हेठ रैलियों डॉक्टर कादिर मक्सी ए बेन की शिरकत सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी है तो सिंध की जाग्राफियाई हदन से हथ चलान बर्दाश्त न कंदासीं मुल्क ते मीर रजा केस लाए जुडिशल कमीशन के मुद्दे में वाद जो फैसलो न थी सके वडे वजीर मुराद अली शाह समरी ते सही करे छी मंजूरी दी वकील जिब्रान नासिर चयो है तो सुपर मेडिकल बोर्ड कैंजी तसली लाए ठायो पे वने छा डॉक्टर सुमैया समेत सभी डॉक्टर स्कूल लिखो है।

हैदराबाद रेलवे स्टेशन ते अवामी एक्सप्रेस पटड़ी तां लही वियो। पिशावर खां कराची वेंदड़ अवामी जो एक गाॾी तां लथो। रेलवे अख़्तारनि जो चवणु आहे त प्लेटफॉर्म ते लॻण दौरान रेल गाॾीअ जो 16 नंबर गाॾो लही वियो। हादसे सबबि रेलवे ट्रेक मुतासिर न थियो। ॿियनि रेल गाॾियुनि जी अचवञु जारी आहे।

वीरपुर मातलो में 25 ॾींहं अॻु क़त्ल थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज ॻोठ सूमर मोरीअ में मौज अली लुंड जे वारस एसपी ऑफिस आलो एहतजाज कयो। वारसनि जो चवण हो त पुलिस जवाबदार ख़ालिक शाह ॿियनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो। जैकबाबाद जे कोयटा रोड ते हथियारबंदनि जो मेडिकल सेंटर ते हमिलो, वाके ख़िलाफ़ एहतजाज। खानगी मेडिकल सेंटर जे मालिक अब्दार मंगलाणी जी अॻवानी हमले पारां कोयटा रोड ते टायरनि खे बायूं ॾेई धरणो हयो वियो। वापारी जो चवणो हो त 5 हथियारबंद साथियुनि सां गॾिजी हुन जी ज़ाल डॉक्टर मुसरत शाहीन खां भतो घुरियो न ॾियण तां मजीद बंदनि सां गॾिजी हुन जी ज़ाल ऐं हुन खे क़तल करण जूं धमकियूं ॾिनियूं। जवाबदार गिरफ़्तार करे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। गिरफ़्तार नाहे कयो। आई जी सिंध नोटिस वठे।

0: ऐं भारत ऐं नेपाल में बरसातुनि बाद आयल बोड तबाही मचाए छॾी। केतिरा ई माण्हू फौत, केतिरा ई गुम। बोड जे वहिकरनि में गाॾियूं ऐं घर बि लुड़ी विया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में लैंड स्लाइडिंग सबबु पूरो जबल ई मिटीअ जे ढेर में तब्दील। दरियाह जो लंग बि बंदि थी वियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: जीएफएम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: कितनी काले वेश बैठा रोंदा दारो दारो हुसैन दादा बेकरार हुसैन होय मैं दा

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: ya aplicar el derecho a aprender esa decisión.
1: चलेगा ये मैं आपको कहता हूँ अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा उसकी शिप भी नहीं चलेगी इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा आप तैयार है जेल के अंदर होंगे वही सलाखों के अंदर होंगे
2: केपी में वजीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लगंदी वफाकी हुकूमत जी मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में इमरजेंसी लगण घुर्जे ऐं लगंदी बि आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं त सभु कुझु थींदो इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम जो चवण हो त केपी में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न पर वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी न हलंदो
3: के बाद स्कूल भी नहीं जा सकता और ना कोई यूएफओ कर सकता अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा इमरजेंसी लगा देगा जो मुझे अपने नजरिए से हटा है मुझे कोई फिक्र नहीं है इस किसी की जो मेरा मौका फेरी दिन था जो इमरान खान साहब का है जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है वो इसके बाद भी होगा अपनी पॉलिसी बदलो पॉलिसी शिफ्ट लाओ हमारे फौजी जवानों को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ इसमें पाकिस्तान की भी लड़ाई है इसमें हम सब की भी लड़ाई है
2: गवर्नर राज जी धमकियुनि खां डिॼण वारो न आहियां कुर्सीअ ख़ातिर पंहिंजे नज़रिए तां हथ न खणंदुसि केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे मूंखे को बि फिक्र न आहे रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो पंहिंजनि फ़ैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो
4: मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ आपको अब यह फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है इट्स क्लियर एज दैट
2: पीटीआई के पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहीं एक की चूंड करनी पवंदी सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वियो आहे सुदसमा वारे वफाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदर तबाही थी चुकी वफाक के पीए के अरबे रुपया डिना ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणु आहे त केपी हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि

लॉन्ग मार्च बाबत पार्टी की तैयारी न हुई। लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील थियण से पार्टी कमजोर थी है। केपी के अगूणे वे वजीर अली अमीन गंडापुर है तो सूबे में वे वजीर की रिट न होने सबब वजीर मेंबर्स ए कारकुनन के खंबे पे वे बानी के चवण से वजारत छी बीहर हुकुम मिलो तो बीहर वो वजीर थी सका तो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं। हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं। असां पन वण जो हुआसीं दुनिया में, असां पन वण जो हुआसूं दुनिया में, वरियो वाओ पल सां बुहारिया विया हूं। विसारे छॾियो लोक आहे त छाहे, विसारे छॾियो लोक आहे त छाहे, मिटी माउ खां पर संभारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं। असां हेठि पंहिंजा विछाणा विछाया, असां हेठि पंहिंजा विछाणा विछाया, वरी बि अंगण तां उथारिया विया हूं। असां हेठि पंहिंजा विछाणा विछाया, वरी बि अंगण तां उथारिया विया हूं। अञा साह आहिनि नसारियो अव्हां था, अञा साह आहिनि नसारियो अव्हां था, अॻे मौत खां ॼण त मारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं। अञा साह आहे नसारियो अव्हां था, अॻे मौत खां ॼण त मारिया विया हूं, वरी शाहिदा वहम दिल में उथियो आहे, वरी शाहिदा वहम दिल में उथियो आहे, लॻे थो अव्हां खां पुकारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे बीमारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं।

दिल जी गाल जी बुधंदड़न सभनी प्रीम प्यारन जे नाव ही खूबसूरत गीत सनम मारवी जे आवाज में का सार त लह पिया अचो तो गजी गीत के एंजॉय क्यों

निगाहूं सदन थियूं नज़ारा सदन था निगाहूं सदन थियूं नज़ारा सदन था घणी देर खां प्यार प्यारा सदन था नथो जीव धरती छॾे वेल काई नथो जीव धरती छॾे वेल काई अमृता अखियुन खे सितारा सॾनि था निगाहूं सॾनि थियूं नज़ारा सॾनि थियूं।

दोस्तों वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं। ॿुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GAFM 88
1: नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ऐं मज़ो अची वेंदो आहे. कुझु त अॼुकल्ह दोस्त शामिलु थिया आहिनि जेके झूंगार वसीले, ऐं अॼु बि इहो ई चाहींदासीं त जंहिं दोस्त खे झूंगार न अचे त को कुझु न कुझु असांखे झूंगारे करे जेको आहे महफ़िल में मज़ो वठा आहिनि सभिनी महबूबनि खे. बिल्कुलु हिकु अधु कॉल शामिल कंदासीं वरी. तव्हांखे ख़बर आहे त ब्रेक ॾांहुं बि वञिणो हूंदो आहे, सो कॉलर लाइन ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम, खैर साईं, किथां खां? क़ुर्बान अली ख़ासि खेली साईं, वेलकम, भली कार, ख़ुश आमदीद, कहिड़ा हाल आहिनि? अलाह जा अहसान. छा पंहिंजे अॼु दिलि जी ॻाल्हि चवणु चाहींदो? शायरी में, बिल्कुलु शायरी ॿुधायो.
1: समन मीराली जो कलाम आहे, ॾाढो पुराणो कलाम आहे, हल त हलो यार भई घुमण कचे ॾे.
0: अॼु लाज़मी हलंदासीं कचे बि, बिल्कुलु प्यारा. नाम शामिल करणु चाहियो कंहिंजा त ब्रेक ॾे वेंदासीं. नाम शामिल कयो, प्रोग्राम ॿुधा कयो, शामिल कंदासीं, ॿुधंदा रहो, शामिल कंदासीं अव्हांजी फरमाइश. नाम शामिल करणु चाहींदो? वॾी महिरबानी सर, थैंक यू, लव यू, लख लाइक. जी दोस्तो, वक़्तु थियो आहे हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो. ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विहंदासीं. ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क.
2: PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamini Lawyer, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का सास. GAFM 88 की आवाज.
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: 44 सालनि जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद. आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद. 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज़, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारनि जो किरण, गंजपण, फॉलेज, ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुयसर इलाज फराम करे रहा आहिनि. आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर. टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं. अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 0326-22-00-440.
5: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम

0: अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
2: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

प्यार जो कहसा पेच मां पाए वेठो आ, प्यार जो कहसा पेच मां पाए वेठो आ, पत्थर जे बुत खां आस लगाए वेठो आ। हू छा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू, हू छा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू, मां जंहिंजी ख़ातिर पाण भुलाए वेठो आ। प्यार जो कहसा पेच मां पाए

0: तुझा साईं शायरी तमाम असांखे वणनि था, गौर बि ॿुधूं था।
1: लख थोरा लख थोरा।
0: मालिक तोखे आबाद कंदो, अलाह तोखे ख़ुशि कंदो, असांखे आबदा परवीन जो कलाम ॿुधाईंदे त वॾी महिरबानी थींदी।
1: मां शामिल थो कयां आबदा खे बि प्ले लिस्ट में, बिल्कुलु फरमाइशूं हलंदियूं रहंदियूं। नाम खणण चाहींदुसि जा
0: कलाम तई उमर मूं त मारू विसारण ॾुखियो आहे, पखनि में हाकिम सरकार कखनि।
1: ठीकु आहे मुंहिंजा साईं।
0: दोस्त हिन साईं
1: जी
0: पुनल खान मुगलरी जे घोट खां जुड़ियल मुगलरी ॿुधे थो, दोस्त जुमन मुगलरी ॿुधे थो, अहमद मुगलरी ॿुधे थो, जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनि खे सलाम वालेकुम जी मदद।
1: वालेकुम सलाम सखी पीर मौला जी मदद, वॾी महिरबानी साईं, कुर्ब लव यू, लख लाइक,
0: हलो ख़ुशि कंदो,
1: थैंक यू। जी दोस्तों बिल्कुलु अव्हां जूं फरमाइशूं असां पंहिंजी प्ले लिस्ट में शामिल कंदा वञूं पिया, अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं, कचहरी बि कंदासीं, ऐं न्यूज़ ब्रेक खां अॻु में असां हिकु अधु फरमाइश अव्हां जी पूरी बि कंदासीं। असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूदु आहे, प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं ऐं प्रोग्राम खे चार चंड लॻाईंदासीं, अव्हां छाकाणि त असांजे प्रोग्राम जी ज़ीनत आहियो। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां?
2: वालेकुम सलाम,
1: केरु प्यारा?
2: सागर,
1: वेलकम वेलकम भलीकार, अवां जा गीत माण्हू ॿुधनि था, मूंखे फीडबैक मिले पियो, जिन दोस्तनि ॿुधो, कुझु मुंहिंजे पर्सनल नंबर ते बि राब्तो कयो, चयूं त सागर यार हाणे त अवां जे महफ़िल में जेको आहे त चारि चंड लॻा आहिनि, ॻाए ॿुधो ऐं शायरी बि शामिल आहे, छा त शायरीअ खे, शायरीअ खे जेको आहे न ख़ूबसूरत बणाइण लाइ ॿिनि शयुनि जी ॿियनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, हिकु सभ खां पहिरियों त शायरी सुठी हुजे, हिकु उन खां पोइ ॿ ॿियूं थो ॿुधायां, हिकु त जी सुठी धुन, जेकॾहिं मूसीकार सुठी धुन नाहे त पोइ ॻाए जेतिरो बि माण्हू भलो त धुन भली नाहे त उहो मज़ो न ॾींदो, ॿियो वरी फनकार या फनकार पहिरियों चऊं त पोइ धुन चऊं, ॿिन्हिनि जो पाण में मेलाप हूंदो आहे। छा था ॿुधायो अॼु, अॼु छा था ॿुधायो? भले उर्दू ॿुधायो या सिंधी, पर ॿुधायो पाकिस्तानी। जी क्या
0: समझ गुम न छपर तुझो पुन
1: प्यारा, अवां प्रोग्राम ॿुधण खां बिना कॉल कंदा हो ईअं ई अंदाज़े मूजिबि? नव पंद्रहं ते प्रोग्राम शुरू थींदो आहे, 9:30 असां कॉल अटेंड कंदा आहियूं। दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो?
2: जी जी
1: जी क्या
2: सुरेश कुमार
1: जी,
2: जयराम दास
1: जी,

0: जी
1: मकन कुमार
0: जी
1: प्रेमी सागर
0: अवां नालो बुधल बुधल लगे तो अवां जा ठीक आ अवां सा वरी करें कचहरी थी दी न्यूज़ ब्रेक ते वनन खाग में एकड़ी फरमाइश पूरी कंदा से वरी मेहरबानी इनन से नी महबूबन के मुझे तरफा भी सलाम नमस्ते हक मौजूद
1: यार बुधाई जाऊं रुक्सार मैम जो प्रोग्राम
0: जी प्यारा
1: जिंदगी गुजार
0: है ठीक आ बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी थैंक यू सर लव
1: ओके
0: अल्लाह बेहद मज़ो अची रहियो अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे अवां जूं शायरियूं ॿुधे अवां जूं दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधे ऐं प्लस में अवां खां गीत ग़ज़ल वायूं बि ॿुधी रहिया आहियूं सो वक़्तु आहे हींअर हिकिड़े फ़रमाइश जो ऐं फ़रमाइश सभ खां पहिरीं थी जलाल चांडे जे आवाज़ में को बि गीत त पोइ अवां सभिनी महबूबनि जे नाव स्पेशली जिन दोस्त फ़रमाइश कई उन ऐं उन जी सॼी संगत जे नाव जलाल चांडे जी आवाज़ में ख़ूबसूरत गीत कोन बच सां दर्द ते ॾे विच रो रो दम ॾे सां अचो त गॾिजी गीत खे इंजॉय कयूं

वापस वैसा कौन वतन ते तलब तड़ी विच तेका बस मर वैसा कुछ न शबीर मचई वैसा सखना सिर उड़ाने सा।

0: 우리 수보아 따깨로 우리 수보아
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज आप सुन
2: असा हालात करन ला आई भी सिंधका अपील ला जो फिल फोर जो तो अति चाल के आदत को ने
3: आज असा के धमकी मिली रे है आज असा के अगवा पे पहुंचे
4: असा भी जो पाए को मुआशरे जो आवाज आए मजलूम कने इतने जो को दाद फरियाद नथी लवाए किथे जो ने सदारत नथी लवाए
5: नालियल कल्चर जो आ हिकरो तो भूंगो तलब करन ता यो कातो जो कानून आ अगे कतक दीदा ने अगवा करे मुख्तलिफ मुदार पा के आवे ता
6: हक सच लिखण वाला साथी उनन के पांजो जो नवाड़ियों इन्हें देख करें ऐसा जैसे साफ़ भी बेबाक साफ़ ये के अगवा था यो
7: ये कुछ बेबाक साफ़ या जिन चारों ने भी फुल फोर आजाद चिंद पुलिस के तेरे ने में फोटो पे वा फोटा चोरों को पे आसानी अगवा जी सख्त लग रही है मज़मत आते हो
8: केटीएन न्यूज़ खानपुर मारे जे रिपोर्टर अजीम सियाल जे अगवा के बदी थी वया पुलिस मुगवी सहाफिया के बाजाब कराण में मुकम्मल तौर ते नाकाम बणन पुलिस जी कार्रवाई बे रुगो गालन तई महदूद अजीम सियाल जी बाजियाबी लाए अमली कदम न खयो अजीम सियाल जी बाजियाबी लाए कलम धड़ी सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहरन में मुजाहिरा ए धरना घोटकी नौशरो फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो थरी मीरवा चक बख्शापुर ए भान सैदाबाद में एहतजाज कयो वियो जरवार खैरपुर दोदापुर कुम दड़ो ए तलार में भी कलम धड़न जो एहतजाज सखर में वकीलन भी एहतजाज कर अजीम सियाल जी बाजियाबी जो मुतालबो कयो
9: टीएन न्यूज का सीनियर रिपोर्टर के कच्चे में अगवा हो गया है सर आपने उस हवाले से
10: मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के लिए केस रेफर करेंगे आप तफसीलात हमें फराहम करें उसका भरपूर नोटिस है
8: सुतसमा वाले फाकी वजीर अता तारण केटीएन न्यूज के रिपोर्टर अजीम सियाल जी अगवा जो नोटिस वरतो अता तारण चयो आहे त सहाफ़ी अजीम सियाल जी अगवा जी मज़म्मत कयूं था वाके बाबत तफसील डिना वञनि सहाफ़ी जी बाज़ियाबी लाइ घुर्बल कदम खणणु ज़रूरी आहिनि

0: वो जब रिक्वायर करेगा तो ये सारी चीजें।
1: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, इस तरह होंगे अंदर होंगे।
2: खैबर पख्तूनख्वा में वॾो वज़ीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लॻंदी, वफ़ाक़ी हुकूमत जी मशावरत आख़िरी मरहले में दाख़िल। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में इमरजेंसी लॻण घुर्जे ऐं लॻंदी बि। आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं, सभु कुझु थींदो। इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो आहे त केपीअ में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि। केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो, गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सुहेल आफ़रीदी न हलंदो।
3: के बाद स्कूल भी नहीं जा सकता और ना कोई मुझे फोर्ट कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटा है, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस किसी की। जो मेरा मौका फेरी दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट ना हो, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी गलती है, इसमें हम सब की भी गलती है।
2: गवर्नर राज जी धमकियुनि खां डिॼण वारो न आहियां, कुर्सीअ ख़ातिर पंहिंजी नज़रिए तां हथ न खणंदुसि। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे। मूंखे को बि फिक्र न आहे, रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे। पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लांग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो आहे, पंहिंजनि फ़ैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो।
4: मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, आपको अब यह फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज क्लियर एज दैट।
2: पीटीआई के पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान मां कंहिं हिकु जी चूंड करणी पवंदी। सुहेल आफ़रीदी इंतज़ामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर बि नाकाम थी वियो। सुदसमा वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो त सूबे अंदरि तबाही थी चुकी आहे, वफ़ाक़ केपी खे अरबे रुपया ॾिना आहिनि, ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणो हो त केपी हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे। सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि। लांग मार्च बाबति पार्टीअ जी तयारी न हुई। लांग मार्च जी तारीख़ तब्दील थियण सां पार्टी कमज़ोर थी आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर चयो आहे त सूबे में वॾे वज़ीर जी रिट न हुअण सबबि वज़ीरनि, मेंबर्स ऐं कारकुननि खे खंभियो पियो वञे। बानी जे चवण ते वॾे वज़ारत छॾी, ॿीहर हुकुम मिलियो त ॿीहर वॾो वज़ीर थी सघां थो। तहरीके तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे 4 अक्टूबर ते रिथियल एहतजाज वरी सॼे जी हिमायत करे छॾी। तर्जुमान अखूनज़ादा हुसैन चयो त तहरीक इंसाफ़ अपोज़िशन इतिहाद जो हिसो आहे। तहरीक तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान पारां 4 अक्टूबर वरी एहतजाज में भरपूर शिरकत कई वेंदी। 27 सेप्टेम्बर वरी सॾ खे सरबराही इजलास में अपोज़िशन इतिहाद जो गॾियल सॾु करार ॾिनो वियो हो। बैरिस्टर गोहर खे वाज़े ॿुधायो हो त हीउ वक़्तु ॿीहर न ईंदो, 27 सेप्टेम्बर खां हिकु ॾींहुं अहम आहे। हीउ वक़्तु पाकिस्तान जे जमहूरी मुस्तक़बिल ऐं आइन जी बालादस्तीअ लाइ इंतिहाई अहम आहे। दुश्मन फ़ौज खे जल्द अरबी समुंड मां नेकाली ॾिनी वेंदी। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली ख़ामनाई समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में चयो आहे त ईरानी फ़ौज दुश्मन खे ईरानी समुंड मां नेकाली ॾिनी आहे। हाणे अरबी समुंड मां दुश्मन जी नेकाली लाइ ईरानी फ़ौज जल्द वॾी कार्रवाई कंदी। अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त उमेद आहे त अमरीका तरफ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटे चुको आहे पर कार्रवाइयूं मुकमल तौर ते ख़तम न थियूं आहिनि। मिडटर्म चूंडनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जौहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो गॾियल अरब अमारातुनि जो गुझो दौरो 7 अक्टूबर 2023 ते हमास जे हमले बाबति अॻुवाट ख़बर ॾियण वारनि ख़बरुनि जी तरदीद करण जी दरख़्वास्त। پردہی خبروں ادارے موجب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گزرے ڈی نجی اڈام ذریعے یو ای جو گجو دورو کیا نیتن یاہو گڈل عرب اماراتن کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات کرے حماس کے حملے بابت اگواٹ اطلاع دینے والن خبروں کی تردید کرنے کی درخواست کی عالمی ادارے موجب گڈل عرب اماراتن اسرائیلی وزیر اعظم کے 2023 میں حماس کے حملے کا آگاہ کیا ہو جن کے نیتن یاہو نظر انداز کیا ہو

जैकबबाद जे कोयटा रोड ते हथियारबंदन जो मेडिकल सेंटर ते हमलो वा के खिलाफ एहतजाज। खानगी मेडिकल सेंटर जे मालिक अब्दुल सत्तार बंगलानी जी अगवाणी में हमले पारा कोयटा रोड ते टायरन के बाहियों लही धरणो है पियो। वापारी चयो तो पंज हथियारबंद साथियुनि सां गॾिजी ज़ाल डॉक्टर मुसरत शाहीन खां भतो घुरियो, न ॾियण त मजीद जखराणी हथियारनि बंदन सां गॾिजी हुन जी ज़ाल ऐं हुन खे क़तल करण लाइ हमिलो कयो। जवाबदार गिरफ़्तार करे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। काज़ी अमन जे घोट शकल खान चांडियो जे रहवासियुनि जो ॻोठाणे जे क़तल ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठाणनि चयो त कुझु ॾींहं अॻु पाणी जे वारे तां 55 वरनि जी अब्दुल्ला चांडियो खे क़तल कयो वियो। पुलिस जवाबदार इक़बाल आराही, अहसान मिरासी, अब्दुल गफ़ार मिरासी ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो। आई जी सिंध नोटिस वठे।

0: भारत ऐं नेपाल में बरसातुनि बाद आयल ॿोॾि तबाही मचाए छॾी। केतिरा ई माण्हू फौत, केतिरा ई गुम। ॿोॾि जे वहिकलनि में गाॾियूं ऐं घर बि लुड़ी विया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग सबबु पूरो जबल ई मिटीअ जो ढेर में तब्दील। दरिया जो लंघ बि बंदि थी वियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।